खान जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था नवंबर 2025 में ओवर हिज सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस इज सेड टू हैव बीन इन्वॉल्वड इन एक्टिविटीज लिंक्ड टू कंबोडिया बेस्ड प्रिंस ग्रुप एंड इट्स चेयरमैन चेन जी. Authorities in the U.S. had described Prince and its affiliated entities as part of a transnational cyber fraud and money laundering syndicate. अब समझ में ये आ रहा है कि investigations चल रही हैं in Singapore into entities and individuals linked to the Chen Zi. तो अब आगे की बात ये कि क्या होगा इस बिल्डिंग का और किस तरह से ये सीज करे हुए जो सारे के सारे प्रोसीड्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे या फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कुछ और ही पता लगेगा. बढ़ेंगे आगे, ऑफ कोर्स विल कीप यू पोस्टेड. पल पल ही ना अब तेरे, धुरंधर के साउंड ट्रैक से ये गाना, इट्स कॉल्ड पल पल. सांसों में सुने साथ साथ, चलिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. गुड मॉर्निंग.

0: ना पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा।

0: to Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Welcome back. Radio Masti 24/7 पर रेनुका आपका कर रही है इंतजार और इंतजार कर रही है ओहो समथिंग अमेजिंग जो कि जिसका नाम है RTS जोहर बारू सिंगापुर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जी हाँ फरवरी 2027 में खुलने का मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज Views and opinions. The Johor Bahru Singapore Rapid Transit System RTS Link is now expected to begin passenger services in Feb 2027. System test trial runs complete hone wale hain saal ke end mein. Well, jo latest delay hai, it adds another chapter to a cross-border rail project first announced more than 16 years ago. Ye jo project hai, it has undergone several changes and delays, including a lengthy suspension April 2019 se jab Malaysia ne review kiya tha is project ko. Ab jab RTS Link project formally resume kiya gaya July 2020 mein, then the targeted opening was pushed from the end of 2024 to the end of 2026. अब भाई 2010 से 2016 जो था उसमें आइडिया हुआ उसमें पूरा अग्रीड राउट जो था मई 2010 में सिंगापुर मलेशिया ने अनाउंस किया था इस प्लान को आप सोच सकते हैं कि कितने साल हो चुके हैं उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे ली सियन लूंग इन साथ ही में नजीब रजाक उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी थी कि कन्वीनियंस होगी कम्यूटर्स को और वाकई होगी और उसके बाद आप सोचिए तब से चलते चलते चलते क्या हुआ 2017 से 2020 के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए कुछ डिलेज हुए जी हाँ दोनों ही कंट्रीज ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट्स बदली बहुत कुछ हुआ राइट एंड देयरफॉर सस्पेंड भी किया गया था इस प्रोजेक्ट को 6 महीने के लिए उसके बाद जब जुलाई 2020 में इसको इकट्ठा किए करके दोबारा से शुरू किया गया ऑफ कोर्स उस टाइम कोविड भी था खैर 2021 से 2025 तक सॉलिड कंस्ट्रक्शन और अनवेलिंग्स एंड LTA ने अवार्ड किया $180 million का ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज एंड टनल्स इन 2021 आप सोच सकते हैं उसके चलते चलते चलते इस साल के एंड तक हो जाएगा सारा कुछ खत्म और फिर ऑफ कोर्स फरवरी से आप मजे उठा सकते हैं सुने साथ साथ में वॉर 2 के साउंड ट्रैक से वाला गाना लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा गाना है जी बिल्कुल मैं कहती हूँ शावा लेकिन एड शेरन और अरिजीत सिंह का कहना है सैफायर आई विल सी यू आफ्टर दीज सॉन्ग्स गुड मॉर्निंग

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: 2 अक्टूबर को क्या किया? पाव भाजी खाई, सत्संग में गए. चलिए, टाइम है बॉलीवुड अपडेट का फॉर दिस आवर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो. रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टार्ट. जी हाँ, 2 अक्टूबर को अजय देवगन की दृश्यम एंड द कंक्लूजन, दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट. वेल, आप सोच सकते हैं सैटरडे को थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन स्टिल इनफ मोमेंटम टू क्रॉस द 150 करोड़ रुपीस मार्क इन जस्ट 2 डेज. ये जो फिल्म है ये इस समय एंटर कर चुकी है द टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म्स ऑफ द ईयर एंड इट्स ऑल सेट टू क्लाइम द लिस्ट वेरी क्विकली. एडवांस बुकिंग्स जो हैं ऑफ दृश्यम द कंक्लूजन वो प्रूफ कि कितना इंतजार कर रहे थे लोग. 4th हाईएस्ट एडवांस बुकिंग कलेक्शन रहा ओपनिंग डे पर इस फिल्म का, और साथ ही साथ में 50 करोड़ तो पहले ही दिन रिलीज से पहले ही हो चुके थे. और आप सोच सकते हैं उसके बाद 93 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, और फिर सॉलिड कलेक्शंस कंटिन्यूड रहे. अभिषेक पाठक की ये डायरेक्टोरियल है जिसने की कमाया 50 करोड़ से ज्यादा ऑन सैटरडे, इन एडिशन टू 62 करोड़ दैट इट अर्नड ऑन फ्राइडे. अब इसी के साथ में पहुंच चुके थे पहले ही दिन में 115 करोड़ तक की ग्रॉसिंग. लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई हाईएस्ट ओपनिंग इसको कह सकते हैं, आम, स्त्री टू, एनिमल, उनके साथ में इसको कंपेयर किया जा रहा है. ओवरसीज ऑफकोर्स दृश्यम 3 ने उतना ज्यादा पागलपन नहीं दिखाया, बट मैं तो देखा ही ना कल जाके. अब जिसने मुझसे पूछना है कि कैसी थी फिल्म और मेरा क्या व्यू है, तो वेल आई कुड से कि आप देख ही आइए इसको. जी बिल्कुल, ऐसे ही तो मैं बताती नहीं हूं आपको, सारी बातें बता दूं, एंड बता दूं क्या है, बिकॉज दृश्यम का तो एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. वेल, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज विच इज सपोज टू बी द अल्टीमेट एंड द कंक्लूडिंग पार्ट, इट हैज अजय देवगन्स विजय सालगांवकर रोल अलोंग विद तबू, श्रेया सरन एंड रजत कपूर एंड इशिता दत्ता, मृणाल जाधव एंड कमलेश सावंत. सौरभ शुक्ला भी दिखेंगे इसमें. और नए एंट्रेंट्स कौन है? वेल, हम जानते हैं कि जो हमारे अक्षय खन्ना है वो निकल गए थे इस फिल्म से, तो उनकी जगह जयदीप अहलावत एंड प्रकाश राज भी है इस फिल्म में. देख के जरूर आइएगा. दिस इज दृश्यम द कंक्लूजन, आई एम टॉकिंग अबाउट. रेडियो मस्ती 24/7 पर. टाइम फॉर द नेक्स्ट म्यूजिकल ब्रेक. गुड मॉर्निंग.

वेलकम बैक। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है सुबह 7 बजे से आपका हमारा ये वाला फेवरेट शो। जी हाँ, सब इंटेलिजेंट लोगों का फेवरेट शो कहती हूँ मैं इसको। इट्स कॉल्ड द मॉर्निंग शो। सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब, ओनली ऑन द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। बड़े आगे बात करते हैं, थाईलैंड से क्या खबर आ रही है। वेल, हाल ही में वहाँ के फ्लड्स, ऑफ कोर्स हैवी फ्लड्स की बात करें हम तो जितना भी आसपास के आपने वीडियोस देखे होंगे, बातें करी होंगी लोगों से जो ट्रैवल कर रहे थे, उनसे पूछा होगा तो आपको पता होगा दैट वाज प्रीटी टफ। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ थाई एयरवेज चाई इम सिरी, ही हैज बीन फायर्ड बाय द कंपनीज बोर्ड फॉलोइंग द फ्लैग कैरियर्स दैट इज थाई एयरवेज का केओटिक रिस्पॉन्स टू द हैवी फ्लड्स दैट हिट बैंकॉक लास्ट वीक। Well, चाई ने रिपोर्टर्स को बताते हुए ये कहा that they did not give a reason and he said that they wanted to see if there are gaps, mistakes in the work carried out. Thai Airways ने ये कहा that in a filing to the stock exchange, जी हाँ, Friday को, that चाई had been suspended pending a fact-finding investigation and review of its crisis management procedures. Director Sumrit Sumning को appoint किया गया है acting CEO. Thai Airways has been forced to cancel dozens of flights last week or suspend kiya unhone apne cargo operations ko partly due to issues with its employees being unable to get to work when the floods hit. और जो ऑपरेशंस को डिसरप्शंस हुए एट द मेन स्वर्णभूमि एयरपोर्ट इंक्लूडेड ह्यूज बैगेज डिलेज दैट रिक्वायर्ड असिस्टेंस फ्रॉम द एयरफोर्स टू क्लियर। बैंकॉक वाज डिक्लेयर्ड अ डिजास्टर अफेक्टेड जोन एट द वीकेंड आफ्टर रिसीविंग 320 mm ऑफ रेन ओवर 3 days, एज मच एज इट टिपिकली रिसीव्स इन ऑल ऑफ सेप्टेम्बर। थाई टूरिज्म मिनिस्टर जो है उन्होंने सिंगल आउट किया थाई एयरवेज को फॉर रिब्यूक पिछले हफ्ते और ये कहा कि वी नीड टू डिस्कस हाउ द मैनेजमेंट नीड्स टू वर्क मोर प्रोएक्टिवली। अगर वो अपना काम नहीं कर सकते तो फिर उनको रिजाइन करना चाहिए। वेल, पब्लिक की अपोलोजाइज तो किया ही थाई एयरवेज के CEO ने, लेकिन फिर भी उनको बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। वेल, अ टोटल ऑफ 84 एयरक्राफ्ट कवरिंग 61 डेस्टिनेशन इन 27 कंट्रीज थाई एयरवेज इस समय बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ गया था विद द फ्लड्स इन बैंकॉक। अब नेक्स्ट इज दिस गाना फ्रॉम दंगल और बात करेंगे बहुत सारी बातें। वेल, देयर स्टिल अनदर आवर टू गो, सो गाइस स्टिक अराउंड विद मी ना, प्लीज ना, मुझे अकेले मत छोड़ना, ठीक है। बाय द वे, द नंबर इज 9151896 3 इफ यू वांट टू ड्रॉप अ क्विक हेलो, गुड मॉर्निंग।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh Mehra.
1: Alright, coming to the third and the final hour of Radio Musti 24/7 ka the morning show. Main Renuka aapka kar rahi hu intezaar is side par, and it's time for another quick update from the home ground. Ji haan, HDB ke resale prices, uske bare mein padha aapne? Monday coffee ka best partner. The Morning Show on Radio Musti 24/7. Prices of Housing Board's resale flats dropped for the third straight quarter, even after a cooling measure imposed on private property downgraders was lifted. Early estimates जो publish किए गए थे October 1st को, उसमें दिखाया गया कि HDB के resale prices have fallen by 0.2%. Prices dipped 0.1% in the first quarter, the first time in close to 7 years, followed by 0.3% in the second quarter. There were 7,528 transactions in the third quarter of 2026, up 5.2% from 7,157 units in the same period in 2025. HDB ने ये कहा that it has not seen a significant increase in the prices and number of resale flats purchased by private property downgraders following the lifting of the 15-month wait-out period on July 28. फिर भी उन्होंने कहा कि हम मॉनिटर करते रहेंगे रीसेल मार्केट. इंट्रोड्यूस किया गया सितंबर 2022 में 15 मंथ्स का वेट आउट पीरियड वाज एम्ड एट कर्बिंग डिमांड फ्रॉम कैश रिच प्राइवेट होम ओनर्स लुकिंग टू बाय अ रीसेल एचडीबी फ्लैट. नेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर ची होंग टाट ने ये कहा कि जो रूल्स हैं उनको ईज किया गया बिकॉज मार्केट कंडीशंस हैव इंप्रूव्ड एंड एचडीबी रीसेल प्राइसेस हैव मॉडरेटेड सिग्निफिकेंटली. Prices in the private home market बढ़ गए इस समय 1.4% in the third quarter, up from the 0.5% in the previous quarter. लेकिन transaction volume नीचे ही रही by about 30% compared with the previous quarter, falling to 4,296 units from 6,148 units. सभी एरियाज देखे जाए सिंगापुर में तो प्राइसेस ऑफ नॉन लैंडेड प्रॉपर्टीज रोज बाय 0.9% इन द थर्ड क्वार्टर कंपेयर्ड विद द 0.1% डिक्रीज इन द प्रीवियस क्वार्टर. और प्राइस मूवमेंट्स काफी मिक्स्ड रहे, कोर सेंट्रल रीजन डिपिंग बाय 0.1% आफ्टर 1.8% इंक्रीज इन द प्रीवियस क्वार्टर. सो ओवरऑल खबरें तो हम आपको देते ही रहेंगे, वो भी प्रॉपर्टी मार्केट से. फिर से जी हाँ, डिप हो गए प्राइसेस एचडीबी रीसेल के, देखते हैं क्या होगा. फिलहाल तो धुरंधर के साउंडट्रैक से गाना सुनेंगे, और ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अरे भाई, कपड़े उपड़े अपने बिल्कुल बदल दो, कंफर्टेबल वाले कपड़े निकाल लो, कीप योर वाटर बॉटल्स हैंडी. गरम ड्रायर कंडीशंस एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर. शुरुआत तो हो ही चुकी है ना. गुड मॉर्निंग. सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब ओनली ऑन द मॉर्निंग. भाई, सिंगापुर के वेदर की बात करी जाए तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जब मेकअप कर रही थी ना उस दिन, मतलब दो दिन पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पसीना आता जा रहा है, मेकअप होता जा रहा है. Wasn't easy. Fair and warm conditions, जी हाँ, expected on several days, particularly during the first week of the month. ऐसा कहा Met Department ने सिंगापुर में. और साथ ही साथ मैंने कहा that the total rainfall for the first half of the month is forecast to be below average across most of the island. And इसीलिए dry spell पिछले दो हफ्तों से अगर compare किया जाए तो. लेकिन localized thundery showers may fall over parts of Singapore in the late mornings and afternoons on a few days. Daily temperatures जो हैं, they are likely to reach a high of between 34 degrees Celsius and 35 degrees Celsius on most days. और बढ़ सकता है 35 से भी ज्यादा कुछ दिनों में. गर्मी के मारे मेरा ऑलरेडी हाल हो रहा है ऐसा. Some nights may be warm and humid with temperatures above 27 degrees Celsius. अभी सितंबर का जो वेदर रहा उसको रिव्यू करते हुए मेट सर्विसेज ने कहा दैट मोस्टली सारे के सारे पार्ट्स ऑफ सिंगापुर रिकॉर्डेड अबव एवरेज रेनफॉल. लोकलाइज्ड थंडरी शावर्स तो थे, वो कुछ कुछ दिनों में लेट सितंबर में भी ऑलमोस्ट हर जगह पे हिट हुए. लेकिन रीजनल विंड कन्वर्जेंस जो है उसकी वजह से हैवी थंडरी शावर्स सिर्फ सितंबर 22 को हुआ था. खैर, ऑल दैट वी सॉ. लेकिन खुशी की बात यह है दैट द एयर क्वालिटी इन सिंगापुर हैज रिटर्न टू मॉडरेट लेवल आफ्टर रीचिंग अ न्यू पीक इन द सेंट्रल रीजन early on September 29. तो अब 60 to 73 पर आ चुका है PSI and इसीलिए आप आराम से खुल के सांस ले सकते हैं. ठीक है, try कीजिए. एक तारा coming up next. Wake up Sid and wake up everybody else, not just Sid. Okay. Good morning.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Unbelievable in the world of Bollywood. जी हाँ, बात करने वाली हूँ मैं हनुमान अंश की collections के बारे में right now. And it refuses to bow to Drishyam 3. क्या बात है, कमाल ही कमाल. Who would have really expected that?
2: Monday Coffee का best partner, the morning show on Radio Masti 24/7. News. Views and a pitch.
1: All right, बात करते हैं हनुमान अंश की. जैसे कि मैंने कहा, डे 58 पे जो कलेक्शंस है, विशाल चतुर्वेदी इज अ डिवोशनल फिल्म हनुमान अंश, जिसमें देखेंगे हम शोभिना सत्या को एज रिवर्ड स्पिरिचुअल गुरु नीम करोली बाबा. एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू होल्ड इट्स ओन इन फ्रंट ऑफ न्यू टेंट पोल रिलीजेस एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस. मतलब हद ही हो गई है यार. आप सोचिए, दृश्यम 3 जैसी फिल्म आके खड़े हो जाए आपके सामने, एंड यू आर यू नो अ फर्स्ट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर, एक बिल्कुल डिवोशनल फिल्म. आप सोचेंगे यार, अब नहीं खड़ी हो सकती, अब तो फिल्म के उतरने का समय आ चुका है. लेकिन सोचिए, 420 करोड़ वर्ल्ड वाइड दिस मूवी इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और इसी वीकेंड की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ तो और इसने ऐड करे बॉक्स ऑफिस पे, जो कि फ्राइडे से थोड़े से कम थे. लेकिन फिर भी जस्ट इमेजिन, इट इज स्टिल शोइंग 4, 3, 4, 5 स्क्रीन्स. ओ माय गॉड, गिवन द रिडक्शन इन द स्क्रीन्स, अब इस समय हनुमान अंश फिर भी इज गोइंग ऑन एंड ऑन दृश्यम 3 के सामने, जैसा कि मैंने कहा. और बाकी फिल्में भी हट रही हैं. जी हाँ, आयुष्मान खुराना की जो फिल्म आने वाली थी, उसने भी डिसाइड किया कि वो पोस्टपोन कर लेगी अपने आप को, बिकॉज बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते. एंड यू कैन इमेजिन कि हनुमान अंश जो है, इस समय अगर उसके डिटेल्स देखे जाए, कलेक्शन देखा जाए, तो इट्स जस्ट 20 करोड़ रुपीज अवे फ्रॉम ओवरटेकिंग अनुराग सिंह की पीरियड वॉर ड्रामा बॉर्डर 2. जी हाँ, एंड फिर बन जाएगी ये सेकेंड हाइस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म. और सनी देओल और वरुण धवन की जो फिल्म थी, जो कि आप सोच सकते हैं कि आदित्य धर की फिल्म के पास में ये पहुंचती चली जा रही है इस समय, जिसने कमाया था 1100 करोड़. लेकिन वेल, 50% होने के बाद भी इट विल स्टैंड जस्ट नेक्स्ट टू धुरंधर. इजंट दैट एन अमेजिंग अनइमेजिनेबल एंड दैट इज बींग वॉच्ड बाय हनुमान अंश. चलिए कुछ पंजाबियत लाई जाए सुबह सुबह अपने अंदर. सुनते हैं गाना रेडियो मस्ती 24/7 पर. लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: All right, getting back to the news on the recent Fly Dubai flight to Israel. Well, let's have a quick look at what the investigators have to say about it on the morning show. It's time for the next news update. Serious headlines. With a not so serious. UAE investigators ka kehna hai that the co-pilot of a Fly Dubai flight to Israel this week was planning a terrorist attack. Ji haan. Aur usne use kiya tha cockpit ke emergency axe ko to attack the captain. But they did not reveal his motive. पिछले हफ्ते आपको याद होगा जो फ्लाइट वेंसडे को जा रही थी इंडियन कैप्टन वाज असॉल्टेड बाय द को पायलट बट मैनेज टू ओपन द कॉकपिट डोर जिसकी वजह से पैसेंजर्स और क्रू अंदर आए और ओवरपावर किया उन्होंने अटैकर को एंड फोर्स्ड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन सऊदी अरेबिया. इनिशियल फाइंडिंग्स यूएई इन्वेस्टिगेशन की डिड नॉट डिस्क्लोज द को पायलट्स नेशनैलिटी और फिर उसके बाद द कंट्रीज स्टेट न्यूज एजेंसी ने ये कहा कि भाई ही वॉज ओमानी. ये कुछ टाइम के बाद में कन्फर्म किया गया. Media reports ne bhi kaha hai that he had been barred from flying in his home nation over concerns about extremist views. Aur reports aayi ki the first flight carrying Israelis home from the UAE landed in Tel Aviv after services were suspended following the attack. Co-pilot ne attempt kiya tha to carry out a terrorist act and had attacked the captain in the cockpit with an emergency axe and tried to take control of the aircraft. इसी के साथ में इनिशियल फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हुए पैसेंजर्स ने भी डिस्क्राइब किया रशिंग टू द कॉकपिट एंड अ फ्लाइट फॉर कंट्रोल द फाइट फॉर कंट्रोल आफ्टर द प्लेन प्लमेटेड 17,000 फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड इन अ स्पैन ऑफ मिनट्स. और जो वुंडेड कैप्टन जिनकी हमने आज हमारे शो पर पहले भी बात करी है स्मिथ मचार की, वेल ही ओपन द कॉकपिट डोर एंड ही हैज बीन हेल्ड एज अ हीरो. ही वॉज पिक्चर्ड विद यूएई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमदन बिन मोहम्मद ड्यूरिंग अ विजिट बाय द लीडर टू हिज हॉस्पिटल बेड साइड एंड साथ ही साथ में ही ऑफकोर्स शोड द हाइएस्ट डिग्री ऑफ करेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर ह्यूमन लाइफ, ऐसा कहा यूएई के ऑफिशियल्स ने. The co-pilot, meanwhile, is in custody in the UAE. Multiple media outlets overnight identified him as Hammam al-Hammami and said he had been banned from flying in Oman over concerns about his extremist views. And we will keep you posted of what happens in the investigation. Filhal ke liye chota sa musical break yahan pe.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: All right, it's time for me to go, guys. लेकिन not before I tell you about मैंने इस weekend पे एक ऐसे event को attend किया जो कि बन गया मेरी जिंदगी का इस time absolute highlight.
3: Monday Coffee का best partner, the morning show on Radio Musti 24/7. News. Views.
2: आप जानते होंगे साधु आसवानी मिशन के बारे में और आप ये भी शायद जानते होंगे हमने पिछले हफ्ते कुछ बात करी थी अबाउट दीदी कृष्णा बीइंग इन सिंगापुर. जी तो उनका टॉक था कि अपनी स्टोरी जिंदगी की किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में कि आप अपनी जिंदगी की स्टोरी अपने आप लिखें. इज़न्ट दैट अ ब्यूटीफुल थॉट बाय द वे. सो बड़ा एम्पावरिंग सा ये थॉट था. मुझे उन्होंने कहा कि आप आइए और फायरसाइड चैट कीजिए दीदी के साथ में ऑन स्टेज जब उनका जो वो अपनी बात करेंगी उसके बाद जो उनकी टॉक खत्म होगी तो यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हर. एंड आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड ऑल्दो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इतनी यू नो स्पिरिचुअल गुरुज के साथ में बात करनी थोड़ा सा तो लगता है यार. बट द कॉन्वर्सेशन वॉज सो smooth, it was so beautiful, she is so loving and so I would say just very approachable. Unse maine jis tarah ki bhi baat kari unhone bahut hi pyar se jawab diya about what is life, how we can write our own story, how do we not follow the success of other people on social media and how we should not be impacted by those things and a lot more, right? Badi hi achhi si unhone baatein kari aur phir uske baad mein jo hamare audience the unhone bhi bahut zyada appreciate kiya us conversation. So seriously speaking, I love spiritual talks. I really enjoy that conversation. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन for all the Sindhis tuned in right now, या जो लोग सिंधी language समझते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि दीदी का एक सिंधी में जो talk है, that is going to happen at Singapore Swimming Club. उसके details आप हमारे social media पर देख सकते हैं. या आपको interest है तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपको सारे details दे देंगे. The entry is free. Food served and of course the talks are unbelievable, the bhajans, the talks and everything. So zarur apne aap ko free rakhiye. It is happening in the coming week on the 8th of October and you really must go and attend. Agar aap sindhi samajhte hain to very good, nahi samajhte hain to bhi I tell you, you will enjoy the bhajans and everything. So just go for it guys. With that, it's time for me to tell you have a fantastic rest of the week ahead. मैं आपको मिलूंगी definitely इस हफ्ते में, मिलती रहूंगी हमेशा की तरह. लेकिन फिलहाल के लिए it's time for me to say goodbye to you. Bye and take good care of yourselves, okay?

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।

0: आदाब, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: बड़ी पेंदी हुंदी जे, फिर ना क्यों दस्या नहीं, ते मुड़ के जे कित मेरे वांगू फड़े गए ना, ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी, मैं ते ट्यूशन बारे पुछण आया सी।
1: Tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: खुशी हो गई। अच्छा बाकी है, ओके ओके कैरी ऑन।
1: वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में।
0: हाय मैं तो मर गई गुड़ खा के। हाय राम।
1: बुझ न जाए ये शमा एतबार की।
0: नहीं कभी नहीं। ऐसे कैसे।

0: भाई अब इतने दिन के बाद आई हूँ, इतने सेलिब्रेशन के बाद आई हूँ, तो मेरा ऐसा आना तो बनता ही था। तो मेरे सजना लो मैं आ गई। देखो भैया, आपने इतना धूम धड़ाके के साथ मुझे भले ना मिस किया हो, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं हूं मुग्धा, दिस इज मंडे। मंडे की अगर शुरुआत ऐसी हुई है तो बैंग ऑन, पूरा शो तो क्या ही जाने वाला। वेल दिस वॉज अबाउट टू हैपन, क्योंकि अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, इसीलिए मैं आ गई। इससे ज्यादा ना तो आप मुझसे दूर रह सकते हैं, ना मैं आपसे दूर रह सकती हूँ। तभी तो हाय राम, मैं दौड़ती भागती नाचती गाती झिन टैक नोट्स पे आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। नो ज्ञान, बहुत सारी बातें है भाई, सिंगापुर में कितना कुछ हो जाता है, मैं दो दिन की छुट्टी पे क्या चली जाती हूँ, बहुत सी बातें करेंगे। वैसे भी मैं नाच नाच के थक गई, और तो क्या, जब ये बज रहा था तो मैं डांस कर रही थी। सुन रहे हैं आप मुग्धा को, दिस इज मस्ती हैंग आउट एंड आई विल बी राइट बैक इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
1: गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे।
0: वैसे मजा आया कि नहीं, है ना? आई नो।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस। This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a must-be partnered event.

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: Hey Sigibor, I'm back। हाँ वो तो मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी। अरे क्या ना, ऐसे दो तीन दिन के ब्रेक के बाद वापस आओ तो ऐसा लगता है वाह सब कुछ कितना नया नया है। इनफैक्ट मेरा ईमेल बॉक्स भी मुझे कितना नया सा लगता है, मुझे तो उससे ही वापस प्यार हो जाता है। ऐसा लगता है मेल बॉक्स खोलूंगी और ऐसे बूम, ये है नया धमाका हंगामा ऐसा कुछ मिलेगा। और मिला मुझे हंगामा, मिला मैं आऊं और हंगामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपको याद हो तो हम काफी टाइम से सिंगापुर GBRTS लिंक का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, मतलब मेरा इंतजार खत्म हो गया इसका ना हो रहा। हर बार लगता है बस अब थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, और अभी नई अपडेट आई है कि पैसेंजर सर्विस 2026 के एंड तक नहीं बल्कि 2027 फरवरी के एंड तक स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है। रीजन टेस्टिंग, ट्रायल रन, सेफ्टी सर्टिफिकेशन, फाइनल अप्रूवल अभी कंप्लीट होने बाकी है। अभी तो सब कुछ ही कंप्लीट होना बाकी है। अभी ना कम्यूटर्स जो है वो उनका दिमाग पता है क्या बोल रहा है, ठीक है बॉस कर लो डीले बट प्लीज एक बार फाइनल डेट बता दो, उसके हिसाब से हम चीजें डिसाइड कर लेते हैं। नहीं तो ये फाइनल तो ऐसा हो गया है जैसे कोई बॉलीवुड मूवी की रिलीज डेट डिसाइड ही नहीं हो पा रही है। पोस्टपोन प्रीपोन, प्रीपोन पोस्टपोन, पोस्टपोन प्रीपोन प्री। पर देखो यार फेयर पॉइंट भी है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, काफी हद तक कंप्लीट वो हो चुका है, लेकिन ट्रेन सर्विस में चलो चला के देखते हैं वाला एटीट्यूड ऐसे नहीं ले सकते ना। हम अपने घर पे छुट्टी कार राइड्स थोड़ी दे रहे हैं, ट्रेन चलानी है भाई, सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना, सेफ्टी में हम शॉर्टकट लेने का ऑप्शन ले नहीं सकते, नहीं तो फिर आप ही कहोगे ये क्या कर दिया। मुझे बस ये लगता है कि एक्साइटमेंट ऑलरेडी इतनी ज्यादा बिल्ड हो चुकी है ना कि अब अगर जरा सा भी डिले होता है तो आउच ऐसे एक्स्ट्रा फील हो जाता है थोड़ा। खैर फरवरी 2027 नोट कर लिया है,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, अक्टूबर आते ही ना हवा में एक अजीब सी खुशबू आ जाती है, कुछ आवाजें ऐसे मेरे कानों में बजने लग जाती हैं सुबह सुबह। हालांकि वो सुबह बजनी रही होती हैं पर इतनी बजती हैं कि मेरे कान ही बज रहे होते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट अक्टूबर नवरात्रि गरबा डांडिया एंड यस इट्स हैपनिंग अगेन। घर से रेडी होकर निकलते हो तो एक नॉर्मल इवनिंग के लिए आपको नवरात्रि का सिंगापुर एक अलग ही मैजिक होता है। आप घर से तैयार होकर निकलते हो एक नॉर्मल इवनिंग के लिए और वापस आते वक्त पांव थके होते हैं, आवाज आधी जा चुकी होती है, लेकिन मूड एकदम फुल चार्ज, अगले दिन के लिए पूरी तरह तैयार, राइट? और इस बार सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16, 17 और 18 अक्टूबर 2026 एट लगुना बॉल रूम दूसरी थानी लगुना। आर यू ऑल सेट? यस। एक चीज ना जो कि इस इवेंट को बहुत स्पेशल बना रही है, व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेन्यू इज बिग बिग बिगर पहले से, इट्स अमेजिंगली बिगर। बड़े बड़े गोले बना के घूमो रे घूमो घूमो घूमो घूमो, बहुत ही प्रीमियम वेन्यू आपको पता है। ओह माय गॉश, मजे आ जाएंगे वहां पर जब गोल गोल घूमोगे। और पता है सेलिब्रेशन अगर बड़ी जगह पे हो, पहली बार हो रहा है तो एक्साइटमेंट तो वैसे ही बहुत ज्यादा होने वाला है। और ऐसे बड़े वेन्यू पे जब आप ऐसे गरबा करते हो ना, मन करता है सच में नाच नाच के गरबा करो, घूम घूम के नाच नाच के भाग भाग के। और यहाँ पे ना सिर्फ डांडिया नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक प्योर नवरात्रि एक्सपीरियंस मिलेगा। वाइब बिकॉज इट्स वेरी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन म्यूजिक रिदम कम्युनिटी टुगेदरनेस, क्योंकि बैठा गरबा से यहाँ पे आप में एक अंदर ही अलग सी एनर्जी आप में पास ऑन हो जाती है। यहाँ पे इस इवेंट की खासियत यह है कि यही है कि यहाँ पे बैठा गरबा से शुरुआत होती है। और कहते हैं नवरात्रि का असली एसेंस ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो यहीं से शुरू होता है, बैठा गरबा से। तो जब इतनी सारी बातें मैं आपको बताई चुकी हूँ तो भैया टिकट्स बहुत फास्ट सेल हो रहे हैं, मेरे बोलते बोलते 5, 6, 10, 12, 25 तो ऐसे निकल गए होंगे। अगर आपने अभी देखा अपने टिकट्स ग्रैब नहीं किए हैं तो बेटर नॉट वेट टू लॉन्ग। बुकिंग के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर कुछ नंबर्स बता रही हूँ नोट कर लीजिए। राकेश चौहान 9271-9464, चिंतन गांधी 8967-8240, मेनक पंचाल 9127-3620। और उसके अलावा यू नो व्हाट, हम भी आपको टिकट्स दे रहे हैं पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा जी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। तो सवाल है, नवरात्रि में स्टिक्स के साथ जो डांस होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओए पापा जी, नहीं भांगड़ा, सॉरी, ऑप्शन ए भांगड़ा, ऑप्शन बी डांडिया रास, ऑप्शन सी घूमर रे घूमर। ठीक किया, मुझे रोक दिया, घूमर। तो सिंपल वे में ऑप्शन ए है भांगड़ा, ऑप्शन बी डांडिया रास, ऑप्शन सी घूमर। सही जवाब भेजिए 9151-8963 पर और आपको इसके टिकट्स मिल सकते हैं, इट्स टिकट गिव अवे। तो जल्दी से जवाब भेज दीजिए अपने और मौका ये जो जल्दी जल्दी टिकट्स जा रहे हैं ना उसको लेने से चूकिए मत। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।

Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: Tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय वेलकम बैक एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया, पता है ऑनेस्टली हम सब थोड़ा गिल्टी फील कर सकते हैं इसको सुन करके। हम ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, शुगर पहले से कम ले रहे हैं, साउंड्स ग्रेट राइट, लेकिन प्लेट ने स्लाइटली गेम पलट दिया है। एक लेटेस्ट नेशनल सर्वे जो है वो कह रहा है कि एवरेज कैलोरी इनटेक ना वो बढ़ करके 2460 कैलोरीज पर डे हो गया है एंड 57% जो रेजिडेंट्स है अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। सबसे ज्यादा 18 से 29 साल के एज ग्रुप के लोग अराउंड 2655 कैलोरीज खा रहे हैं डेली। सोडियम, यहाँ का सीन तो और भी ज्यादा सीरियस है। यस, 95% सिंगापुर के जो निवासी हैं रिकमेंडेड सोडियम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। एवरेज इनटेक अराउंड 4000 mg पर डे, रिकमेंडेड है 2000 mg पर डे। आप तो सीधा दुगना कर रहे हो भाई। अब रीजन सुनो, हम बाहर ज्यादा खा रहे हैं, यही तो है पूरी प्रॉब्लम की जड़। अराउंड 7 in 10 रेजिडेंट्स एटलीस्ट वंस अ डे बाहर खाना खाते हैं। सूपी डिशेस, प्रोसेस्ड फूड है, फ्लेवर्ड राइस नूडल्स, ग्रेवीज, और ये सब मिलके सोडियम और कैलोरीज जो है क्वाइटली पुश कर रहे हैं। मुझे सबसे रिलेटेबल पता है क्या लगा? हम वर्कआउट करते हैं, बहुत खुशी खुशी बाहर आते हैं, फिर क्या करते हैं, चिकन राइस, हॉट पॉट, डेजर्ट ड्रिंक सब खा लेते हैं और बॉडी कहती है मैडम ये वाला मैथ्स मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मेरे भी नहीं पड़ा, किसी के भी नहीं पड़ता। बट द गुड न्यूज, शुगर इंटेक एक्चुअली डाउन हुई है, पर उससे क्या होगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोग्रेस हो रही है, प्लेट का बैलेंस थोड़ा ऑफ चल रहा है। सो व्हाट आई फील इज वेरी सिंपल, हेल्दी लिविंग का मतलब ना बोरिंग खाना नहीं है, एक्टिव रहने के साथ जो खा रहे हैं उसको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। पर आजकल तो कितनी तरीके की डिशेस आ गई हैं जो बोरिंग भी नहीं है और हेल्दी भी होती है। थोड़ा स्क्रॉल करो, सर्च करो, दिमाग खर्च करो, जेब मत खर्च करो, हल्की मत करो, और हेल्दी खाओ, थोड़ा घर पे खाओ, प्लेट का बैलेंस बनाओ, समझे?

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर, एक काम करो, पहले गेस करो कौन सी फिल्म ने ओपनिंग डे पर पठान और एनिमल जैसे मॉन्स्टर्स को पीछे छोड़ दिया। नहीं, कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, कोई 500 करोड़ बजट वाला स्पेक्टेकल भी नहीं है। नो, इट्स पता है कौन सी फिल्म? यस, दृश्यम 3। हाँ जी, वही विजय सालगांवकर जो अपने पूरे परिवार के साथ 2 अक्टूबर को कहा जाते हैं उन्होंने वापस धमाका किया। अब बताओ कैसे किया होगा। इस बार ना सिर्फ पुलिस को कंफ्यूज नहीं किया, बॉक्स ऑफिस को भी हिला डाला। कैसे? अब इसको ढूंढने के लिए एक और पिक्चर बनानी पड़ेगी, है कि नहीं? फिल्म ने पहले ही दिन 95 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया। लो कर लो बात, 2026 की सेकंड बिगेस्ट हिंदी ओपनिंग जो है वो ये बन गई है दृश्यम। पठान, धुरंधर, इनके ओपनिंग डे नंबर्स को क्रॉस कर चुकी है, इनफैक्ट पीछे छोड़ चुकी है। और मुझे ना इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या लगता है, दृश्यम फ्रेंचाइजी कभी लाउड रही नहीं है। इसका जो हीरो है वो हवाओं में गाड़ी नहीं उड़ाता है, क्वाइटली अपना प्लान बनाता है, पूरे परिवार को एक ही बात कहता है चुप, और पूरा परिवार मानता है, चुप हो जाता है सिवाय उसकी बीवी के, वो कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है। और 2 घंटे तक सारे लोग गोल गोल गोल गोल गोल घूमते रहते हैं डाउट्स में। माय गॉड, जलेबी की तरह सीधी कहानी होती है। अजय देवगन, तबू एंड थर्ड चैप्टर। ऑडियंस क्लियरली अभी भी विजय सालगांवकर की दुनिया से बाहर आने के मूड में है ही नहीं, उनका बस चले एक और बना लेंगे, कंक्लूजन क्यों बनाई? बस एक बात बताइए, दृश्यम देखने के बाद आप भी ना नॉर्मल फैमिली कॉन्वर्सेशन में सस्पिशियस जाते हो गए, देखो हमें किसी को कुछ बनाना नहीं है। क्या ये बोले, मैं 2 अक्टूबर को घर पे था, दिमाग ऑटोमेटिकली बोलता है प्रूफ दिखाओ, मैंने पाव भाजी खाई, बिल दिखाओ, पिक्चर देखी कौन सी, टिकट दिखाओ। एंड सच में दृश्यम देखने के बाद, फर्स्ट दृश्यम देखने के बाद मैंने लिटरली बिल्स और टिकट्स ना संभाल के रखने शुरू कर दिए थे, पता नहीं क्यों, पर कर दिए थे रखने शुरू। मन का पता नहीं कब कौन सी तबू आ जाए और बोली टिकट दिखाओ, बिल दिखाओ, तो मैं क्या करूंगी इसीलिए।

ये बॉलीवुड है बॉस, अगर आपको कोई कुछ करने पे मजबूर कर दे, समझो काम हो गया। अरे काम बाकी है, बताती हूँ ब्रेक के बाद।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: तो जो सिंगापुर फेस्टिव सीजन के पहले एक फनी चीज होती है, वार्डरोब सडनली हमसे सवाल पूछने लग जाते हैं, क्या तुम मुझे रिपीट करोगे?
2: मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है।
1: ये हमारा जवाब होता है। अलमारी खोलते ही क्या होता है,
2: मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं।
1: ऐसे हो जाता है ना। अगर आपका जवाब है कुछ नया चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ हो सकता है। बाकी सवालों के जवाब नहीं है, कहाँ जा सकते हो ये बता सकती हूँ। हाई लाइफ एग्जीबिशन सिंगापुर, ये आ रहा है एग्जैक्टली उसी मूड के साथ जिस पजल में आप हैं। और हेलो सर, आप भी, क्योंकि ये सवाल सीधा आपके ऊपर आने वाला है।
2: सुनो ना, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं? सुनो ना, शॉपिंग में चलो ना। सुनो ना, मेरा मूड अच्छा नहीं है। सुनो ना, मेरा मन खराब हो रहा है। सुनो ना, मैं बोर हो रही हूँ। सुनो ना, मुझे शॉपिंग करनी।
1: इन सब का जवाब एक ही जगह है, बस 13th और 14th अक्टूबर को ले जाना, सुबह 10 से लेके रात के 8, छोड़ देना, खुद ही घूमना। हॉलीडे इन सिंगापुर ऑर्चर्ड सिटी सेंटर। जी ये है अ वेरी हाई हाई हाई हाई लाइफ एग्जीबिशन सिंगापुर में, समझ रहे हैं आप। एक दो ब्रांड्स नहीं है भाई, 75+ लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स हैं, और वो भी एक ही छत के नीचे, अंडर वन रूफ। फेस्टिव वेयर, ब्राइडल कुट्यूर, डिजाइनर ज्वेलरी, अमेजिंग एक्सेसरीज, होम डेकोर, लाइफस्टाइल पीसेस, मतलब आउटफिट से घर तक पूरा मूड मैडम का अपग्रेड हो जाएगा और आपका भी, क्योंकि उनका मूड अपग्रेड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो रैक से आप चीज पिक करके ऐसे नहीं जा रहे, डिजाइनर से आप डायरेक्टली मिल सकते हो, स्टाइलिंग एडवाइस ले सकते हो, पर्सनलाइजेशन डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि ये आउटफिट अच्छा नहीं है यार, मतलब या ऐसा लगे कि अच्छा है बट मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट चाहिए, मुझे यहाँ पे वो कन्वर्सेशन पॉसिबल है। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, आप भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हेलो सर, हाँ यहाँ पे है, ले जाके मैडम को खुश कर दो, बातें करेंगी वहां पे बातें, कपड़े बढ़िया नए नए लेंगी, आप भी देखना कुछ बढ़िया मिले तो ले लेना, है ना। एंड कलेक्शन भी एक मूड का नहीं है, एलिगेंट डे वेयर है, फुल स्टेटमेंट फेस्टिव वेयर है, ब्राइडल लुक्स है, सब है यहाँ पे। सो अगर फ्रेंड्स या फैमिली के साथ ऑर्चर्ड साइड पर एक प्रॉपर फैशन लाइफस्टाइल आउटिंग प्लान कर रहे हैं 13th and 14th October, सेव द डेट। हाई लाइफ एग्जीबिशन सिंगापुर, दो दिन है, 75+ डिजाइनर्स हैं, एंड वन वेरी डेंजरस पॉसिबिलिटी कि आप सिर्फ देखने जाएंगे और बहुत सारे बैग्स लेके वापस आएंगे, ट्रस्ट मी।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। बॉलीवुड में ना कभी कभी फिल्म का ट्रेलर जो है वो आ जाता है, बस बन जाता है, ऑडियंस डेट नोट कर लेती है और फिर मेकर्स क्वाइटली कहते हैं एक्चुअली थोड़ा सा बेटा और करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, शुरुआत ही कही थी शो में, इस बात का जिक्र किया था मैंने कि कुछ चीजें बॉलीवुड की मूवीज की रिलीज डेट की तरह होती है, पोस्टपोन होती रहती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और ऑनर डेट फाइनल नहीं होती है। फिलहाल आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर जो है, पहले वो 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अभी ये फिल्म शिफ्ट करके 23 अक्टूबर को रिलीज कर दी गई, का डेट फाइनल किया गया है। द रीजन इज वेरी सिंपल, मेकर्स को ना क्लीनर थिएट्रिकल विंडो चाहिए था, मतलब कम भीड़, ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस और फिल्म का अपना प्रॉपर वीकेंड उसको मिले। अभी क्या दृश्यम आई है ना, तो मेकर्स चाहते थे दृश्यम से किसी भी तरह का क्लैश ना हो, डिसीजन बहुत ही अच्छा था, वरना आप कहाँ चले गए, खो गए, ये भी ढूंढने के लिए हमें एक अलग कॉप टीम अलॉट करनी पड़ती। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं है, पर हाँ डिसीजन ये जो आपने लिया था मेकर्स का जो है ये बहुत ही बढ़िया था। हर फ्राइडे कोई ना कोई जो है वो बारात निकल रही है, वेडिंग सीजन हो रहा है, बॉलीवुड कैलेंडर निकाल के देखो तो हर फ्राइडे कोई ना कोई पिक्चर आ रही होती है, तो ऐसे में आपको अपना एक प्रॉपर क्लीनर विंडो चाहिए ही होता है और हर कोई यही सोच के पिक्चर बनाता है कि हमें देखने के लिए स्पेशली लोग आएंगे। फिल्म में आयुष्मान है, उनके साथ में सारा अली खान, गुलशन ग्रोवर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मुकुल देव, यस मुकुल देव एंड राम कपूर। ट्रेलर के बाद से ना प्रोजेक्ट काफी क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है। डेट शिफ्ट का एंगल इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कभी कभी लेट आना बेटर हो सकता है, बशर्ते एंट्री को गलत टाइम पे कर दिया जाए, है ना, देर आए दुरुस्त आए, जैसे आप लोग कई बार आते हैं ये देख लो ये अब आ रहे हैं। That's why I say, देर आए दुरुस्त आए, वैसे ये भी दिल देना, दिल देना, थोड़ी देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आइए आइए।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अब इनका जिक्र किए बिना तो मैं इस आर को आगे बढ़ा ही नहीं सकती। और आप ये सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड आर में ऐसा कौन सा हीरो है जिसकी बात बच गई? बिल्कुल भाई, यही तो है असली हीरो। दुबई से तेल अवीव जो फ्लाइट जा रही थी, फ्लाइट दुबई की फ्लाइट जो है जिसके पायलट कैप्टन स्मिथ मछार जो है उनके को पायलट ने उन पे हमला किया, विल नॉट गो इन डिटेल्स। लेकिन फिलहाल बात यह है कि ये बॉलीवुड आर है और हम हीरोज से शिफ्ट होके असली हीरो पे आएंगे। नाउ दिस हीरो इज बीइंग क्लेम्ड बाय एवरी हूज हु ऑफ एवरीवेयर। और बॉलीवुड में भी वही हाल है, हर कोई स्मिथ की जो है वो तारीफ कर रहा है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, एवरीबॉडी। और ये करना बनता भी है भाई, उन्होंने जो कमाल किया है ना, असली हीरो कौन होता है उन्होंने इसका साक्षात एग्जाम्पल दिया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई देखिए, ठीक है हमारे बॉलीवुड के हीरोज हैं, इनसे इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में कई बार ऐसा मोमेंट भी आता है जब आपको ये दिखाना पड़ता है कि यू आर अ रियल लाइफ हीरो। अनिल कपूर, शाहरुख खान, सैफ अली खान, एवरीबॉडी, सब लोग उनको प्रेज कर रहे हैं। सनी देओल है, सुनील शेट्टी, जावेद अख्तर, परेश रावल, एवरी सिंगल पर्सन, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, विजय देवकोंडा, एक्टर मैडी, मतलब कोई नहीं बचा है। और जिस तरीके से जो जावाजी दिखा करके उन्होंने इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया है ना भाई साहब, असली हीरो है। इतने इंजर्ड होने के बाद भी, इतनी इंजरीज झेलने के बाद भी इस बंदे ने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया। सो अ रियल सल्यूट टू अ रियल हीरो, इनसे इंस्पायर होना तो बनता है। वैसे देखिए कहना नहीं चाहिए, पर आई एम श्योर इन पे एक फिल्म बनेगी। और अगर इन पे फिल्म बनी तो आपको क्या लगता है इनको देख के कौन बनेगा बॉलीवुड का रियल लाइफ हीरो टू प्ले सुमित मछार? सोचो सोचो, गेस गेस।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुग्धा को एंड दिस इज रेडियो मसी 24/7 लाइव शो का थर्ड एंड द लास्ट आर, जहां पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंगापुर एक सीन इमेजिन करो और एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप घर में आराम से चाय पी रहे हो, सडनली आपका घर हवा में उड़ने लग जाए, कोई आपसे आके कहे अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप कहोगे बैठो बैठो आराम से चिल करो, हम उड़ेंगे हवा में उड़ेंगे लैंड जी, और फिर पूरा घर जमीन से 2 फुट ऊपर खुशी के मारे ऊपर हवा में उड़ रहा है। नहीं नहीं, ये कोई मतलब गैजेट नहीं है डोरेमोन का जो आपके घर को हवा में उड़ा दे। जापान में एक्चुअली अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जहां पे घर को लिटरली ग्राउंड से थोड़ा लिफ्ट किया जा सकता है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, लिटरली पॉसिबल हो रहा है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। वाह, गाना अदनान सामी ने गाया था लेकिन काम इधर आ रहा है जापान। खैर, सिस्टम काफी फैसिनेटिंग है। घर के नीचे एक स्पेशल एयर चैम्बर होता है, जैसे सेंसर्स जो है ना वो ग्राउंड मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। रफली 0.5 से 1 सेकंड के अंदर कंप्रेसर एक्टिवेट होता है और एयर कुशन घर को करीब 3 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर उठा देता है। मतलब अर्थक्वेक नीचे अपना ड्रामा कर रहा है और घर कह रहा है मेरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मैं जा रहा हूँ, एंड वो हवा में ऊपर आ जाता है। ट्रेमर्स रुकते हैं तो धीरे धीरे घर जो है वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अब टेस्ट में ना घर के अंदर टेबल, चेयर, इवन डेलिकेट वाइन ग्लास सब कुछ रखे गए थे। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल ट्रेमर्स के बावजूद चीजें अपनी जगह पे स्टिल थी, और यही सबसे बड़ी बात है, यही तो मैं जानना चाहती थी। जापान में अराउंड 90 होम्स रिपोर्टेडली सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने बचपन से पढ़ा है कि जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो जगह, चाहे इंडिया हो चाहे जापान हो चाहे कोई भी दुनिया का कोना है, जहाँ पे हाल फिलहाल बदलते ज्योग्राफिकल मोमेंट्स को देखते हुए अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए, है ना। हाँ, एक्सपर्ट्स का एक सवाल जरूर है अभी भी, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव मल्टी डायरेक्शनल अर्थक्वेक में सिस्टम कितना इफेक्टिव होगा, ये असेस होना अभी बाकी है। पर कॉन्सेप्ट देखो यार, कमाल है ना। पहले हम घर लेते वक्त क्या पूछते थे, कौन से तरफ का फेसिंग है, पार्किंग है कि नहीं, व्यू कैसा है, पहाड़ दिखते हैं कि नहीं। अभी क्या होएगा, मैडम बालकनी है, सब कुछ है, पर अर्थक्वेक आए तो घर हवा में उड़ता है अपना। बस फाइनल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: दिवाली शॉपिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है क्वालिटी, है ना। दिवाली शॉपिंग की सबसे अच्छी चीज होती है क्वालिटी होनी चाहिए। लिस्ट घर से बना के निकलो, वापस आते वक्त सामान जो लिस्ट में नहीं है वो भी हमारे पास होता है, जो लिस्ट में है वो भी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमें इतना अच्छा सामान मिलता है कि हम उसको लिए बिना रह ही नहीं पाते। मन मचल मचल जाता है और फिर हम दो की जगह चार चार जगह आठ लेकर आते हैं। और दिवाली वैसे भी यार भर भर के सामान लाने का फेस्टिवल है। सुंदर घर सजाओ, ऐसा है ना, टेम्पटेशन और बढ़ने वाला है। क्योंकि जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो आ रहा है अपने ग्रैंड 43rd एडिशन और 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के साथ। इतना स्पेशल उनके लिए मौका है, हम कैसे उनको और स्पेशल ना फील कराएं। 16 से लेकर 25 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन सिंगापुर एक्सपो हॉल 9, आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। दबा के एंजॉय करो, धमाकेदार चीजें हैं, शॉपिंग करो, खाओ पियो, हाय। एंड शॉपिंग का सीन पता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, इंडिया के डिफरेंट रीजन से फैशन, फेस्टिव कलेक्शन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, मतलब दीपावली वार्डरोब से गिफ्टिंग तक काफी कुछ, इनफैक्ट सब कुछ एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे एक्सप्लोर करो और पूरा दिन एंजॉय करो सच में। लेकिन ये जो जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो है ना, सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग तक नहीं है, अरे काफी कुछ है। यहाँ पे रंगोली कंपटीशन है, आप एंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, कैरम, चेस, कुकिंग कंपटीशन, डांडिया, जैक कम्युनिटी अवार्ड्स है, दीपावली डिनर है, और पता है सब के लिए सब कुछ है। एंड विजिटर्स के पास दुबई, लंदन, पेरिस, रोम और न्यूयॉर्क जैसी जगहों के लिए फ्री एयर टिकट जीतने का मौका भी है। बताओ आम क्या आम गुटलियों के दाम। आप सोचो ना, आप निकले थे दीपावली शॉपिंग के लिए एंड सडनली आप टिकट्स लेके घर आ रहे हो, दिवाली के बाद वी हैव अ ट्रिप टू लंदन। किसने सोचा था ऐसा हो सकता है, नहीं ना। हाय, देखो भैया मेरी किस्मत इस मामले में बहुत अच्छी है नहीं, मैं सोच के जाती तो हूँ जरूर कि मैं कुछ जीत के आऊंगी, पर मैं तो वो गोल जो गोले फेंकते हैं ना उसमें एक साबुन भी नहीं जीत पाती हूँ। आप जाओ ना प्लीज, जीत के आओ, जो भी ले आ रहे हो दो लाना। पक्का पक्का, ओके। तो कहाँ जाना है आपको, जाना है, हाँ डेट भी नोट करो, 16 से 25 अक्टूबर सिंगापुर एक्सपो हॉल 9।

पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से उड़।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Mari melody, mari jagat janani.
2: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा. It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मिलाने वाली हूं मेजर जनरल सर नील जोलाब, थ्री बैरन ऑफ बुए आइलैंड्स, आई एम सॉरी अगर आइलैंड का नाम गलत हो गया हो, तो आप सोचेंगे भाई साहब कोई तो आ रहे हैं अभी ऐसे बंदूक बंदूक लेकर के पूरे मिलिट्री यूनिफॉर्म में, मेडल्स और सीरियस फेस और एक शानदार बंदा सामने आ जाएगा। बट हेलो नो, आपके सामने एक छोटा सा क्यूट सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि आपके सामने एक पेंगुइन हाजिर हो जाएगी। जी हाँ, एडिनबरा जू में रहने वाले एक किंग पेंगुइन है ये, जो कि नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड का ऑफिशियल मैस्कॉट है। ऑनररी रैंक, ओ माय गॉड, इट्स मेजर जनरल, नॉर्वेजियन आर्मी का थर्ड हाईएस्ट रैंक है ये, समझ रहे हैं? ऐसे कोई बात नहीं है, प्रमोशन भी ऐसे मजाक मजाक में मिला नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसे मिल जाता है क्या? नहीं सर, निल्स का मिलिट्री कनेक्शन 1972 से चला आ रहा है। पहले कॉर्पोरल सर, फिर उसके बाद सार्जेंट, उसके बाद रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर, फिर कर्नल इन चीफ, और 2008 में नाइटहुड भी मिला, 2016 में ब्रिगेडियर, एंड 2023 में प्रमोशन हुआ और होते होते मेजर जनरल की पोस्ट मिल गई इनको। इनका करियर ग्राफ देख करके ना आपको अपने करियर ग्राफ पे शर्म आ जाएगी। देखो भाई, ऐसा होता है काम, यू नो काम का। अब जब नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड एडिनबरा आते हैं ना, तो प्रॉपर सेरेमनी होती है। सर नील सोल्जर्स के सामने अपनी रॉयल पेंगुइन वॉक में उनका वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इन्हें वर्ल्ड्स हाईएस्ट रैंकिंग पेंगुइन माना जा रहा है, मानता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। जैसे मुझे लगता है प्रमोशन का असली सीक्रेट इज वेरी क्लियर, बंदा ऑफिस पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करता है, मीटिंग्स नहीं बुलाता है, वॉक करता है, फिश खाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, अपने काम से काम रखता है। और हम मंडे से फ्राइडे तक एक प्रमोशन के लिए पावर पॉइंट ही बनाते रह जाते हैं, और जिस दिन प्रेजेंटेशन देनी होती है पक्का उसको डिलीट कर

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competitions, dandiya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October tak, Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
3: वाह, जो सफर इंतहा हो गई इंतजार की से शुरू हुआ था वो फिलहाल अच्छा तो हम चलते हैं तक आ चुका है। आज का शो ना देखो कहाँ कहाँ घुमा के लाया आपको, थोड़ी आपकी, थोड़ी हमारी, थोड़ी कैलोरीज, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा डेट, थोड़ा पोस्टपोन, थोड़ा मिलना, थोड़ा बिछड़ना। ओ माय गॉड, बॉक्स ऑफिस का कैलकुलेशन, घरों का कैलकुलेशन, पेंगुइन्स उनकी पोस्ट का कैलकुलेशन, हमारा आपका कैलकुलेशन, बाय गॉड कितना कैलकुलेशन था। मेरी तो मैथ्स वैसे ही बहुत खराब है। खैर कोई बात नहीं, ऑनेस्टली दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना राइटर्स की जरूरत नहीं है दुनिया खुद बहुत क्रिएटिव है भाई, ढूंढना जरूरी है। हाँ, शायद इसीलिए मुझे ना ये 3 घंटे बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ काम की बातें मिल जाती हैं, कुछ फिल्मी गॉसिप हो जाती है, सिंगापुर की बातें तो ऑफ कोर्स है ही मेरे यहाँ पे आपके पास साथ करने के लिए, और कुछ कहानियां बस ऐसी होती हैं कि हम हंसते और सोचते हैं ओह माय गॉड अच्छा ऐसा भी होता है। जी यही तो है जिंदगी। फिलहाल मुग्धा यानी मैं आपसे लेती हूँ परमिशन अब जाने की। वीकेंड जो है आपका मस्त हुआ ही होगा, मंडे आ चुका है, अब आगे का हफ्ता बहुत ही बढ़िया बीतेगा क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात होगी अब वेडनेसडे को। ठीक है, तो जो कैलोरी वाली स्टोरी है ना उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि मंडे को छोड़ के जा रही हूँ वेडनेसडे का 2 किलो पड़ा हुआ वजन मिले। देखो वजन बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत बोलना कि प्लीज ये मत करो मत करो, नहीं, जो भी खाओ हेल्दी खाओ, वजन जरूरत के हिसाब से बढ़ाओ, जरूरत नहीं है तो क्यों बढ़ाना है ना, घटाओ बिल्कुल। मैं भी जिम जा रही हूँ ऐसा मैं हर बार सोचती हूँ, पर फिलहाल मैं घर जा रही हूँ। ओके, थोड़ी देर बाद, बाय बाय, टेक केयर, वेडनेसडे को मिलेंगे नई बातों के साथ, नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: मंडे ब्लूज नॉट ऑन आवर वॉच। Wake up to world news, fresh updates और थोड़ा Bollywood का मजा भी। Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
2: I love you, रचना।
1: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। पर हाँ, तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਗੇੜੀਆਂ, ਜਰੀਆਂ ਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is...

0: मोर्चे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी

Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
3: तुमको लेकर
2: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो।
2: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
5: रात अकेले है।
6: जोश में रहो।
7: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
8: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
1: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
3: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे,
4: बेबी बूम नहीं बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: Yo, yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
3: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत
1: ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
4: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जोश में रहो।
5: दे आर फ्रेश, दे आर
6: वक्त बर्बाद ना जिंदा,
7: दे आर हैपनिंग।
8: From rocking the charts to ruling the countdown, ये है मस्ती टॉप 20। Now pumping up your Thursday evenings 5 PM onwards, the latest and the brightest, the week's top chart busters.

0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
4: वेंसडे को मूड डाउन हो गया? कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: songs.
1: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो
2: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो कैसा गाना है ये कैसा ही गाना है कि वो देखने में कैसी सी लगती बिल्कुल मेरी तरह वो बोलती है वो कुछ नहीं समझती वो भी बिल्कुल मेरी तरह अंदर से कितनी तेज है रियली नॉट श्योर अबाउट दिस वन 5:00 हो चुके हैं टंटना 6 मिनट रेडियो मस्ती 24/7 पर गुड इवनिंग नमस्ते वेलकम जी वेलकम मंडे इवनिंग लग नहीं रहा है ना मेरी आवाज से लेकिन क्या है ना खुशी इस बात की है कि मंडे इवनिंग फील्स लाइक मंडे इज ऑलमोस्ट ओवर वेल यस जानने की बात ये भी वाली है कि अक्टूबर का वो पावन महीने पे हम लोग एंट्री मार चुके हैं ऑलरेडी इज द 5th डे एंड आई डोंट नो वेयर दिस टाइम इज गोइंग लाइक इट्स सो सुपर डुपर फास्ट कि आजकल सच्ची में लगता है पहले लगता था पलक झपकते महीना निकलता भी लग रहा है पलक झपकते दिन ही निकल जाता है मैं आंखें खोलती हूँ और मैं काम करना शुरू कर देती हूँ और उसके बाद फिर दिन का वो वक्त आ जाता है जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है दैट इज आप सभी से मिलने का वक्त दैट इज राइट भैया आ जाओ शुरू करते हैं हमारा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस वाला टाइम खास बात इस शो की आप सभी को तो पता ही है लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये रिक्वेस्ट शो है हमारा ठीक है तो देखो वैसे तो रिक्वेस्ट हम आपकी हर शो में ही ले लेते हैं क्योंकि अब क्या है ना नेचर तो आपको पता ही है मेरा मना तो हमसे किया जाता है नहीं सो वेल बट देन ये वो खास खास शो है जहां पे आप अपने मूड के हिसाब से जो है गाना रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपने किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं या फिर आपने कहना कि आंद्रा यार ये वाला कर दो यार इससे ना मेरा ऐसा हो जाएगा कि जो अभी एकदम सड़ा हुआ सा रायते जैसा दिन चल रहा था ना एकदम फुल ऑन आतिशबाजियों के साथ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड आई वुड लव टू डू दैट या फॉर मी एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स एज वेल वेल तो ये थी सारे मुद्दे की बात बाकी तो खबरें जो है वो मैं ऐसे चुन चुन के इकट्ठा कर रही हूँ बातें भी बड़ी सारी बतानी है फेस्टिव सीजन तो ऑलरेडी कितना सारा कुछ चल रहा है कुछ कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट खेलेंगे Let's chill out. Let's just have fun. Let's do some masti. What's it? I think so. It's a brilliant idea, Andhra. Kya kamal ke cheeze lekar aati ho tum. Amazing. Masti voice, aapki choice. Good evening. Namaste. Let the Monday sham wali party begin.

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।

0: 11 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: तो ये सब चल रहा है क्या सब चल रहा है? बहुत सारों का बहुत सारा कुछ चल रहा है दोस्त। रेडियो मस्ती 24/7, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यहाँ पर शुरू हो चुका है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, और खबरों का सिलसिला भी बिल्कुल शुरू हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए जुड़ते हुए जा रहे हैं। कैसा होता है ना, एकदम 5 बजे का अलार्म क्लॉक बजता है और उसके बाद से एकदम शुरू हो जाते हैं यहाँ पर आपकी और अंतरा का टाइम। सो वेल, बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे, एक तो इतनी सारी मीडिया एजेंसी हो गई है, मैं भारत की बात कर रही हूँ, कि पता लाइक इफ एक्चुअली नंबर्स देखे जाए तो बहुत ही ज्यादा होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब उनको कुछ नहीं मिलता है कि भाई नहीं है हमारे पास कुछ, एंड इन द एज एंड एरा ऑफ एआई एंड इंटरनेट कुछ भी पोस्ट करते हैं। सो वेल, हमारी जो एक्ट्रेस है रकुल प्रीत सिंह, उनके ऊपर काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स ये वो अचानक से बाहर निकल रहे थे कि इन्होंने टैक्स का फ्रॉड किया है, ये किया है, वो किया है, एंड देन ऑफकोर्स द सेलिब्रिटी हैज टू कम आउट इन पब्लिक एंड आस्क कि भाई कहां से ला रहे हो ये डेटा, आ कहां से रहा है। सो वेल, दैट्स व्हाट शी डिड, शी पोस्टेड दिस फुल सोशल मीडिया पे, और आजकल क्योंकि हर बात की सुनवाई सोशल मीडिया पे होती है तो इनको भी वहीं पे डालना पड़ा। सो वेल, शी जस्ट हैड पोस्ट अ वार्निंग टू ऑल द मीडिया जर्नलिस्ट एंड एवरीबडी एंड द मीडिया हाउसेस जो सेंसेशनलाइज करते हैं न्यूज को विदाउट वेरीफाइंग फैक्ट्स। सो शी एक्चुअली सेड दैट एक बार के लिए सारा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर ही देते हैं, जो सर्च है जो हर कोई रकुल प्रीत मेरे नाम से करके बाहर निकाल रहा है, आर्टिकल्स बाहर निकाल रहा है, इट इज नॉट मी। लेट इट बी नोन दैट आई एम फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस का बैकग्राउंड एंड हैड नो गॉडफादर इन द इंडस्ट्री। आई हैव कम अप थ्रू माय अपना हार्ड वर्क, इसलिए मुझे टैक्स फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, 20 साल की उम्र से टैक्स पे करती हुई आ रही हूँ। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ इलीगल फॉरन रेमिटेंस इन पर्सनल कैपेसिटी और ऑन बिहाफ ऑफ एनी प्रोडक्शन हाउस। सो और मेरी कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर कहीं अब्रॉड में भी ऐसा कुछ नहीं है, और किसी ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट भी नहीं किया है। सो आई अर्ज टू ऑल दोस पब्लिश्ड जिन्होंने किया है ये फॉल्स एंड मलिशियस न्यूज। आई अंडरस्टैंड कि हर कोई इज रनिंग अ मीडिया बिजनेस, हाउएवर बिग, has their own commercial pressures, वो भी मैं समझ सकती हूँ, but it cannot come at the cost of facts, and that is so very true. Just because तुमने as reports to be believed करके तुमने कुछ भी नाम ले लेना, you have to pick up one, you know, name which is famous and you will get your click rates. ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, गंदी बात। अब मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू से दैट पता नहीं हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स में मॉरल साइंस का सब्जेक्ट क्यों था। लाइक मुझे आज तक वैसे समझ में नहीं आया, बहुत ही फनी लगता था, बट मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अब जरूर डाल देना चाहिए मॉरल साइंस का ये जो एक सब्जेक्ट है, पूरी क्लास लेनी चाहिए। आई टेल यू People nowadays, Radio Masti 24/7 पर। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे, मस्ती बॉयज आपकी चॉइस में। आपको कोई अपना चॉइस का गाना सुनना है बताओ तो 9158963।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: Love it completely. The requests have started pouring in and धीरे धीरे मैं एक एक करके उसको सब प्ले जरूर करूंगी. और अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, इट्स मंडे इवनिंग विच इज हमारा रिक्वेस्ट शो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. तो आप भी यहाँ पर अपने मन पसंद गाने जो है रिक्वेस्ट आज की डेट में एटलीस्ट 8 बजे तक तो पक्का से कर सकते हैं. 5:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. आइए आपको बताया जाए इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट क्या कहता है. हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा ऑन सिटी टुवर्ड्स एसएलई बिटवीन एएमके एवेन्यू 5 एंड ब्रैडल रोड. व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन एसएलई टुवर्ड्स सीटीई आफ्टर मैंडा एवेन्यू. और व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन क्वींसवे लॉर्नी एट क्वींसवे अंडरपास. अवॉइड करें लेन नंबर 2. वेल ये इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. बाकी जो है कैसे जाए लंदन एंड कैसे जाए दुबई या पेरिस या रोम, कैसे जाए मेरे पास एक रास्ता है जो कि मैं आके बताऊंगी. ठीक है, तब तक ये रास्ता होते हुए जाएगा केदारनाथ से. दैट्स द मूवी का गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 5:44 रेडियो मस्ती 24/7 अंतराल के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। आप बताओ आपकी चॉइस कौन सी जगह जाना है, मतलब बकेट लिस्ट होगी ना आपकी भी, दुबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम। भाई अगर अब मैं आपको बताऊँ कि ये सारी जगहों पे जाने के लिए यू कैन स्टार्ट चांस टू विन टिकट्स, ओ माई गॉड, आप कहोगे और बताओ इस बारे में। भाई फेस्टिव सीजन शुड ऑलवेज ब्रिंग दिस काइंड ऑफ अच्छी अच्छी खबरें एंड इवेंट्स ऑल अराउंड। दीपावली कि अगर शॉपिंग की लिस्ट आपकी रेडी है, जगह मैं आपको बता देती हूं, अगर नए आउटफिट्स एंड गिफ्ट्स एंड घर के लिए कुछ नया एंड ऑल दोस, कि हाँ हाँ बस वो वाला एक होता है ना, बस देखने देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। एंड स्पेशली इफ यू गो टू दिस प्लेस, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, बिकॉज भाई 43rd edition of Saxalam India, it is back, and is bar shopping ke saath saath you could actually walk away with exciting and seriously exciting prices. Ek to ye 16th to 25th of October ko ho raha hai Singapore Expo Hall 943 mein. It is like non-stop 10 days of Deepavali ka discount sale. Entry aapko to pata hi hai, Saxalam has always been free entry. अब देखो शॉपिंग तो होगी ही, जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब एंड इंडिया के डिफरेंट बेसिकली कॉर्नर से फेस्टिव फ्लेवर एक छत के नीचे आ जाएंगे, वो भी इन सिंगापुर। बट वही खाना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिकॉज व्हाइल यू शॉप यू ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू विन फ्री एयर टिकट्स टू डेस्टिनेशंस आई नेम्ड राइट, पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, न जाने कहां कहां। प्लस देयर आर चांसेस टू विन स्मार्टफोन्स एंड एप्पल वॉचेस एंड सो मच मोर। सो फैमिली के साथ जाए, बिकॉज थ्रू आउट द इवेंट देयर सो मच मोर इज हैपनिंग, इट्स जस्ट नॉट शॉपिंग राइट। हर रोज का लकी ड्रॉज है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज है, देयर आर वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशंस, कैरम कॉम्पिटिशन, कुकिंग कॉम्पिटिशन, there are awards which are happening, there's so much to eat, Deepavali ka dinner, basically shopping karne jaiye, plan karke jaiye, pura festive outing wo ban jayega automatically. Kitna sahi hai na, Saxalam India, that is for you ladies and gentlemen, 16th to 25th of October, Singapore Expo Hall 943, entry free, so shop kariye, celebrate kariye and luck ko bhi thoda Deepavali shopping karaiye, hai na? Aap bhi fir agle gaane ki tarah ek bar jaoge aur puchoge, itni sari khushi kaise hua, ye sari shopping itna zaruri kaise hua, it is always zaruri, shopping is always zaruri.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: क्योंकि यह है रिक्वेस्ट शो, तो सपना आंटी आपके दिशा में आ रहा है, आप ही का रिक्वेस्ट. एंजॉय इट ऑन मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस, या ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतराप के साथ यहाँ पर और चल रहा था यहाँ पर आंटी का रिक्वेस्ट. अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और कभी कभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट किसी की जिंदगी बदल सकता है. That is that one moment in your life जो आपके सब कुछ काया पलट करके रख दे. And I think इनके साथ ये छोले भटूरे वाले अंकल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. I really wanted to call him छोले भटूरे वाले अंकल because I have been craving for छोले भटूरे for so long now. But anyways, come back अंतरा, come back. बहुत सारी कैलोरीज है उसमें, याद रखो तुम किस राह पे निकल पड़ी हो. Okay, coming back to reality. भाई आपने पता नहीं इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है. So well, मुंबई के चेंबूर एरिया में एक ये रेस्टोरेंट है एंड ठीक है. अब ये दिल्ली टाइप के खाने जो है स्नैक्स वगैरह ये सारी चीजें एक छोटा सा 2021 में इन्होंने शुरू किया था जहां पर इन्होंने 3 टेबल और 9 सीट्स करके चालू किया था. बट क्या था कि वक्त के साथ रहते रहते उतना वो चला नहीं एंड बाय 2022 ये कुछ 18 लाख के डेट में चले गए. एंड ही वाज दे वर ऑलमोस्ट थिंकिंग अबाउट काइंड ऑफ शटिंग इट डाउन बिकॉज चल नहीं रहा है. Cut to that one very day. एक दिन एक कॉमेडियन आए जो है उन्होंने वहां पे खाना खाया एंड इंस्टाग्राम पे जो है उन्होंने एक कहा रेकमेंड किया कि भाई बहुत ही शानदार खाना हमने खाया. वहां से थोड़ा सा सेल्स अप हुआ. फिर एक दिन आया इनके पास होम डिलीवरी. भाई आप बिलीव नहीं करोगे किसके घर की होम डिलीवरी थी और मैं खुद को कह रही हूँ इतनी कैलोरीज है. विराट कोहली के घर से डिलीवरी का जो है इनके पास आया था. अपेरेंटली अनुष्का शर्मा जो है उन्होंने ये होम डिलीवरी करवाई थी इनके से. छोले भटूरे मंगवाए थे खाने के लिए. क्या बात है, ये खा सकते हैं तो मैं भी एक दिन तो खा ही सकती हूँ. या दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल मायसेल्फ राइट नाउ. लेटर अनुष्का शर्मा टुक इंस्टाग्राम एंड एक्चुअली में उनके रेस्टोरेंट का नाम लिखते हुए काफी अच्छा रिव्यू उन्होंने छोड़ा कि भाई इतने शानदार दिल्ली बिल्कुल टेस्ट वाले छोले भटूरे मुंबई में बैठे बैठे मैंने इंजॉय किए ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन. कट टू भाई काया पलट ऑफ द बिजनेस. नाउ दैट बिजनेस हैज 2 करोड़ का मंथली सेल्स. दैट इज द पावर ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. भाई एक पोस्ट उस बंदे ने किया एंड भाई का जो है पूरा बिजनेस का जो ग्राफ है वो जो नीचे हुए जा रहा था अब वो ऊपर ऊपर ऊपर होते हुए जा रहा है. इट हैज बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गो देयर एंड ट्राई देयर छोले भटूरे इंक्लूडिंग मी. मेरे को तो फ्लाई करके जाना पड़ेगा बट स्टिल जब मैं जाऊंगी इंडिया हम भी ना कि इंटरेस्टिंग है ना. मैं ऐसी क्या बात होगी, वैसे कमाल के छोले भटूरे तो मैं खुद भी बनाई लेती हूँ. अब मैं मेरे सेहत के लिए और मेरे जुबान के लिए जिसमें पानी आ रहा है अच्छा होगा कि मैं इसके बारे में बात करना बंद करूं और अगला रिक्वेस्ट हमारा जो है वो यहाँ पे प्ले करूं. हमारे सुनील जो है भारत से जो है रिक्वेस्ट आया है. भारत से तो हम कुछ भी नहीं मना कर सकते हैं और ना वो इनकार करती है ना वो इकरार करती है. पता नहीं सुनील ऐसा क्यों कह रहे हैं इस गाने के जरिए. सुनील आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर होने वाली है प्ले. आप तैयार हो ना?

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

हाँ हाँ तुम ही डीजे, तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो। पहुंच गए अच्छे बजे के उस पार। गुड इवनिंग रेडियो मस्ती 24/7 अंतराल के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड भाई एशियन गेम्स हो चुके हैं ऑफिशियली रैप अप एंड इंडिया और सिंगापुर के बारे में बात करना डेफिनेटली बनता है। आई थिंक ये चीयर हर इंसान, हर वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए करना चाहिए जिन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया। एची नगोया जापान जो है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, जापान में इंडिया हैज रैप अप अपना कैंपेन एट नंबर 4 ऑन द मेडल का टेबल। 85 मेडल्स टोटल इंडिया ने कमाए, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 37 ब्रॉन्ज। एंड नंबर्स देखो अपनी जगह है, बट सम ऑफ द स्टोरीज बिहाइंड दोज नंबर, oh my god, they are absolutely amazing. So India brought home gold in both men's and women's cricket, kabaddi and hockey. Men's hockey retained apna Asian Games ka title, while women ended a 44 year ka wait for Asian Games ka gold. And both hockey teams have now qualified for the LA 2028 ka Olympics. Archery mein bhi history bani, Kumkum Anul Mohod jo hai became the first Indian woman to win अपना इंडिविजुअल रिकर्व गोल्ड, while the women's recurve and team जो है ended South Korea's 28 year का होल्ड ऑन दैट टाइटल। एंड वन ऑफ व्यूअर्स जो है उन्होंने दिया इंडिया को फर्स्ट एवर एशियन गेम्स का गोल्फ का गोल्ड। बट यस, हम सिंगापुर में रहते हैं तो यहाँ का भी मेडल टाली बिल्कुल देखना बनता है। Team Singapore finished with 18 medals, 2 gold, 9 silver and 7 bronze. There were some proper history making moments for us as well. Shanti Pereira jo hai became the first woman ever to successfully defend the Asian Games ka 200 meter ka title. Lo Kian Yu brought Singapore ka first badminton singles medal and Shannon Tan jo hai delivered kiya Singapore ka first ever Asian golf medal. Now, Singapore also clocked 10 national records and 23 personal bests during Asian Games. So, yeah, India ho, Singapore ho, ya koi bhi flag ho, sport ki sabse ब्यूटिफुल बात मुझे यही लगती है, पोडियम पर मेडल दिखता है बट उसके पीछे सालों की मेहनत एंड द डिसिप्लिन एंड द सैक्रिफाइस। एंड वो एक जो ड्रीम होता है ना ऑफ एवरी एथलीट कि नेवर से नेवर, ये तो पाना ही पाना है। आई थिंक फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर एट मस्ती मीडिया नेटवर्क, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम्स एंड एवरी सिंगल एथलीट हु मेड इट टू द एशियन गेम्स 2026। वेल अब यहाँ पे मेडल काउंट हो गए, सेलिब्रेशंस भी हमने यहाँ पे ये करते हुए कर ली। अब म्यूजिक की तरफ बढ़ा जाए, अमित की रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और वो कह रहे हैं तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। आज अमित अलग ही मूड में लग रहे हो आप ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन फॉलो बाय एक और रिक्वेस्ट जिसके बारे में इस गाने के उस पार बात करते हैं।

कौन सी है वो एक ऐसी चीज जो जब टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती है? दिल. लास्ट टाइम कब टूटा था दिल आपका, बताइए. वेल, पूरी पूरी इस बात को समझते हुए, इज्जत देते हुए, यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई है. और दिनेश की जो रिक्वेस्ट है वो इस बात पे है कि उनका दिल टूटा है. जी हाँ, बहुत ही हाल ही में टूटा है. दिनेश, मैं ये गाना जो है बॉर्डर मूवी का, जो आपने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, वो मैं चलाने वाली हूँ. हालांकि मुझे लगा ये गाना, दिस इज द मैजिक ऑफ रेडियो, राइट, कि यू लिसन टू दैट सॉन्ग एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिमेम्बर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स. पता नहीं किसका ये गुलजार साहब की लिखी हुई लाइनें हैं कि बहुत सी लहरें टकराएंगी तुमसे. दिनेश सुन रहे हो? बहुत सी लहरें टकराएंगी तुमसे लेकिन बहना उसी के साथ जिसमें दूर तक जाने का जुनून हो, है ना? बहना उसी के साथ जिसमें दूर तक जाने का जुनून हो. So well, I hope you get my message. आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सर आंखों पर.

0: Are you ready to win some Dandiya ke tickets? वो भी सिंगापुर गुजराती सोसाइटी वाला डांडिया. आई नो आ गया ना इंटरेस्ट. इस ब्रेक के उस पर आते हैं और आपको जीतने का मौका देते हैं. सो गेट रेडी.
1: सम इन्विटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
2: It's a must-be partnered event.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से.
3: बजते ही नाचना जरूरी है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. यू से वी प्ले.
0: इस फेस्टिव सीजन की चॉइस तो आपकी यही होनी चाहिए. सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि. भाई आई लव दिस सीजन. मैं कितनी बार भी बोलू उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कम ही पड़ेगा, लेकिन कितना कमाल का है ना. हम लोग कैसे फास्टिंग एंड फीस्टिंग एंड एवरीथिंग, और चाहे रंग अलग अलग हो लेकिन सारे एक जगह पर जब आते हैं और इस तरह से जब गरबा और डांडिया का ये जो सवा बनता है एंड द एनर्जी विच इज देयर, ओ माई गॉड, इट इज absolutely fantastic. That's what you are going to feel. आप में से कई सारे लोग सिंगापुर में ऑलरेडी काफी रेगुलरली वहां पर जाते होंगे, और जो नहीं गए हुए हैं, दिस इज द मौका, दिस इज द चांस व्हेन यू हैव टू गो. एंड दिस ईयर अराउंड भाई सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का ये जो ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि है, विच इज हैपनिंग ऑन द 16th, 17th एंड द 18th ऑफ अक्टूबर, ये जो है एक नए वेन्यू पे जा रहा है. ऑलराइट, एंड द वेन्यू इज मैजिकल. इट्स brilliantly, it's so classy, it's so premium, it's so बहुत ही खूबसूरत है. लगुना बॉलरूम, जो सिद्धानी लगुना की मैं बात कर रही हूँ, इट्स एट 11 लगुना गोल्फ ग्रीन. वेल देखिए, बात यह है कि जो टिकटें हैं वो चली जा रही हैं बहुत तेजी से, ज्यादा दिन बाकी है नहीं. ठीक है, तो जो भी है जितने भी है वो आप, एक तो दो तरीके हैं, ठीक है, आपने या तो बुक करा लेनी है sgs.org.sg/navratri2026. अगर आपको याद नहीं हुआ है आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको भेज दूंगी इसका लिंक. ठीक है, आप वहां पर जाकर जो है अपने अपने फैमिली के लिए फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर, जस्ट गो एंड बुक योर टिकट्स राइट अवे. अदरवाइज जो हम यहाँ पर करते हैं, इफ यू वॉन्ट टू सी की नई अंतरा, वो हमें मजा आता है जब तुम पूछती हो सवाल और हमें जो है तुम्हें आंसर करना पड़ता है और हम अपने आंसर्स भेजते हैं, एंड देन यू नो देन लेट्स सी वेदर वी स्टैंड अ चांस टू विन. इफ यू वॉन्ट टू डू इट दैट वे, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड आइडिया. सो आर यू रेडी फॉर आज का हमारा ये जो सवाल है? जब मैं ये सवाल पूछूंगी मैं आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शंस भी दूंगी, और आपने मेरे को ए बी या सी, ये इन तीनों में से कौन सा सही वाला ऑप्शन है वो लिखकर भेज देना है 9151896 3. सो वेल रेडी भाई, सिंगापुर गुजराती सोसाइटी के सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि के टिकट जीतने के लिए आज का सवाल शुरू होता है, नहीं शुरू होता नहीं, पूछा जा रहा है अब. सो गरबा जो है इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड अराउंड व्हाट. गरबा जो है ट्रेडिशनली किस चीज के अराउंड परफॉर्म किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए अ डेकोरेटेड पॉट या लैम्प, अ डेकोरेटेड पॉट या लैम्प, बी अ बॉनफायर, या सी
4: अ वॉटर वेसल. गरबा ट्रेडिशनली किस चीज के अराउंड किया जाता है परफॉर्म? ए अ डेकोरेटेड पॉट या लैम्प, बी अ बॉनफायर या सी अ वॉटर वेसल. कमान कमान फटाफट से बताओ मुझे 9158963 पर अगर जीतना है वो मौका चाहते हो कि आपका नाम उस लकी डिप में चला जाए और आपको गरबा खेलने का ये हसीन मौका मिल जाए, है ना. चलो आई एम वेटिंग फटाफट से.
5: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर. गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आओ हुजूर तुमको सिंगापुर की सड़कों पर ले चले। 6:38 हो चुके हैं यहाँ पर स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 पर। इट्स टाइम फॉर ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स BKE एट वुडलैंड्स एवेन्यू 12 एग्जिट। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन KJE टुवर्ड्स BKE आफ्टर चुआचू कांगवे। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स तुआस बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड। वेल, ये इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट रहा और मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यानी कि हमारा रिक्वेस्ट शो चल रहा है। चित्रा जी जो है उन्होंने मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि ये जो है शम्मी कपूर का गाना, एनी सॉन्ग ऑफ शम्मी कपूर। इट इज व्हेन आई प्रेजेंटेड विद 4 ऑप्शंस एंड शी सेलेक्टेड अ 5th वन व्हिच आई न्यू। यू नो, जब भी आप कोई गाना रिक्वेस्ट करते हो मुझे पता है आपको आइडिया तो है आपको क्या गाना करना है ना। इट्स जस्ट दैट Yeah, when I present you with options, you come up with the ultimate gana. So well, Chitra ji, dil ke jharoke mein jab aapne is gaane ko utar hi liya hai, to hum bhi yahan pe play kar lete hain. And just in case aap is gaane ko sunte huye suddenly, ye is time pe retro gana, summer ka show. No. This is request show. आप भी अपना favorite gana यहाँ पे request कर सकते हो. 9151893. That's my number.
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: ये क्या ही सुनने को मिल रहा है मुझे क्या सुनने को मिल रहा है। आई हैव नेवर बीन दिस एक्साइटेड टू वॉच एनी मूवी फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती बॉयज आपकी चॉइस। भाई दृश्यम को लेकर हम एक्साइटेड, सभी कोई एक्साइटेड थे भाई, 2 अक्टूबर भी निकल ही गया करते करते हुए। बट द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव बीन लिसनिंग एंड यू नो आई बीन रीडिंग ब्लॉग्स एंड ऑल, तो वो चीज है कि और भी ज्यादा एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो गया। मैं मुझे ये नहीं पता कि मैं कब देखने वाली हूँ ये वाला, बट कृष्ण 3 जो है काफी मतलब चर्चा में पहले भी थी और अभी भी आ रखी है। Why? कुछ मलयालम व्यूअर्स जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्चुअली दे हैव प्रेज्ड द हिंदी वर्जन ऑफ दृश्यम 3 एंड दे हैव गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट 100 times बेटर देन द ओरिजिनल वर्जन, मोहनलाल जी वाला वर्जन। आई एम लाइक व्हाट। प्लान मेरा कुछ ऐसा था कि पहले मैं मलयालम देखूंगी ओरिजिनल वर्जन एंड देन आई वुड वॉच द हिंदी वर्जन, बट यहाँ पे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। बट विद बोथ वर्जन्स हैविंग देयर ओन फैन बेसिस द कंपैरिजन इज डेफिनेटली गेटिंग पीपल टॉकिंग, दैट इज फॉर श्योर। एटलीस्ट इट गॉट माई अटेंशन एज वेल। मैं तो बहुत ही जो लोग ब्लॉग्स वगैरह पे लिखते हैं और अपने व्यूज देते हैं मैं बड़ी सीरियसली उनकी बातों को लेती हूँ और फिर खुद सोच में लग जाती हूँ, देन अपना खुद का स्ट्रैटेजी और प्लान भी रहता है कि क्या किया जाए, देखा जाए कौन सा पहले देखा जाए, वैसे कैसा सही रहेगा, खुद का एक्सपीरियंस डिसाइड करने में जो एक्साइटमेंट है ना दोस्तों, उसमें से तो मतलब एक्चुअली मैं कभी ट्राई करके देखना दैट यू हैव योर ओन प्लान ऑफ हाउ यू want to enjoy a certain movie, how you want to do it. So yes, I have my own plan for Drishyam 3, but whenever that is successful and I am able to do it, finally I will let you know. But yahan par what I am very much sure shot ekdam yahan pe Nanda ji jo hai wo tune in kar chuki hai aur kya hi kamal ka नाचने वाला गाना जो है वो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये गाना सुन के नंदा जी ना ही सिर्फ आप, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आई नो व्हेनेवर दे लिसन टू दिस गाना दे गो लाइक ओ माय गॉड आई वांट टू डांस फॉर सम रीजन, द रीजन इज वेरी राइट, लेट्स लिसन टू इट टुगेदर।

0: We are Radio Mosti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: Well, एक सवाल था मेरे पास आपके लिए, that गोल्ड खरीदने का परफेक्ट टाइम कब होता है? ओके अंतरा, क्या बात कर रही हो? रुको, बात पूरी करने दो. कब होता है परफेक्ट टाइम सोना खरीदने का? जब गोल्ड रेट नीचे हो, obviously. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें कैसे पता कि कल रेट ऊपर जाएगा या नीचे? जोया लुकास, हमारे वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर, नाम तो आपने सुना ही होगा. इन्होंने इस फेस्टिव सीजन उस टेंशन का सोल्यूशन निकाल लिया है. भाई इंट्रोड्यूसिंग जॉय लुकास का फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस. कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके, अपनी ज्वेलरी लोएस्ट गोल्ड रेट पर प्री बुक कीजिए बाय पेइंग जस्ट 10% एडवांस. एंड द स्मार्ट पार्ट इज, अगर बुकिंग के बाद गोल्ड प्राइस अगर ऊपर चला गया, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गोल्ड प्राइस हाइक. एंड अगर गोल्ड प्राइस नीचे आ गया तो यू गेट टू एंजॉय द लोअर रेट, है ना? चित भी अपनी, पट भी अपनी टाइप, एकदम फीलिंग आई ना. मतलब रेट ऊपर जाए तो प्रोटेक्शन, नीचे आए तो लोअर प्राइस का बेनिफिट. इसको कहते हैं फेस्टिव शॉपिंग विद सम वेरी वेरी स्मार्ट प्लानिंग. एंड देयर समथिंग एक्स्ट्रा फॉर एप यूजर्स एज वेल. इफ यू आर मेकिंग अपना फर्स्ट बुकिंग थ्रू जॉय लुकास का मोबाइल ऐप, यू कैन रिसीव $100 का डायमंड गिफ्ट वाउचर विथ योर एडवांस बुकिंग. द ऐप एडवांस बुकिंग ऑफर जो है सिर्फ 21st October तक अवेलेबल है. एंड द एडवांस इज वैलिड टिल 7th of November. So, अगर इस फेस्टिव सीजन गोल्ड ज्वेलरी आपकी शॉपिंग लिस्ट में है, डेफिनेटली होनी चाहिए. या दिवाली गिफ्टिंग के लिए कुछ स्पेशल प्लान हो रहा है, दिस माइट जस्ट बी द टाइम टू चेक इट आउट. दे दिया ना घंटे के एंड में एकदम क्लासिक अमेजिंग न्यूज, जॉय लुकास फेस्टिव प्राइस प्रॉमिस. बिकॉज गोल्ड तो प्रेशियस है ही, उसे खरीदने का डिसीजन भी साथ में स्मार्ट होना चाहिए. बिल्कुल मेरी तरह, दैट इज राइट.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्त रफ्त देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो।
2: हाँ हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
3: ऐसा काम करो ही क्यों, मतलब वो भी सिंगापुर में, सोचो ही क्यों कि जब पता है कि इसमें कुछ तो, मतलब एक अंदर से फीलिंग आई जाती है ना कि यार अगर तो पकड़े गए तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है, हो ही जाएगी, मतलब इजंट इट ऑब्वियस। रेडियो मस्ती 24/7 7 बजे के उस पार, बिल्कुल बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता है। वेल, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में, भाई एक घंटा और है तो आप अपने जो है और कुछ गाने वाने अगर आपको लग रहा है, यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट, दिस इज द प्लेस, दिस इज द टाइम, 9151896 3, दैट्स द नंबर। वेल, किसकी बात कर रही थी मैं, AI से पिक्चर्स बनाना, हम सबने ट्राई कर रखा है, ठीक है, कभी अपने आप को प्रिंसेस बना रहे हैं, कभी 80s में जा रहे हैं, कभी कुछ भी चल रहा है, राइट, बट सिंगापुर में एक AI जनरेटेड पिक्चर, इट डेफिनेटली बिकेम अ पुलिस मैटर। आइए बताते हैं, अ मैन अलेजेडली यूज्ड गूगल जेमिनी एक फेक पिक्चर क्रिएट करने के लिए ऑफ अ क्रोकोडाइल एट Pandan Reservoir and sent it to अपना एक कलीग। अब अपेरेंटली पिक्चर एक कलीग को भेजी गई थी, लेकिन somehow, you know how, somehow it reached the authorities and फिर जो हुआ वो बिल्कुल वर्चुअल नहीं था। अथॉरिटीज जो है रिपोर्टेडली लॉन्च द सर्च एंड कैप्चर ऑपरेशन एंड वॉटर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रोइंग एंड कैनोइंग वर सस्पेंडेड 2 दिन के लिए वाइल दे इन्वेस्टिगेटेड। इट्स अ सीरियस थिंग, राइट। इवेंचुअली पता चला क्रोकोडाइल था ही नहीं, पिक्चर AI जनरेटेड थी। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द मैन हैज बीन चार्ज्ड विद कम्युनिकेटिंग अ फॉल्स मैसेज एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग जस्टिस एंड द लैटर लिंक टू एलिगेशंस दैट ही डिलीटेड द इमेज एंड द जेमिनी ऐप आफ्टरवर्ड्स। ही हैज रिपोर्टेडली इंडिकेटेड दैट ही इंटेंड्स टू प्लीड गिल्टी। और अगर आप हेडलाइन में अप टू 10 years कहीं दिख जाए आपको, दैट कम्स फ्रॉम द मैक्सिमम पेनल्टीज अटैच्ड टू द 2 अलेजेड ऑफेंसेस जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अप टू 3 years ऑफ कम्युनिकेटिंग अ फॉल्स मैसेज, या फिर अप टू 7 फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और बोथ। इट डज नॉट मीन ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू 10 years एज ऑफ नाउ, बट This is that these are the times we are living in. We have to be very, very responsible for each and every single action of ours. पहले कहते थे don't believe everything you read on internet. I think अब कहना पड़ेगा don't believe everything you see on internet either. AI can create something in seconds, but once आप इसको you put it out there, इट्स रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस उसका जो है काफी काफी बड़ा हो सकता है देन द जोक यू जस्ट इंटेंडेड। सो AI यूज करिए, क्रिएटिविटी दिखाइए डेफिनेटली, बस रिजर्वॉयर में मगरमच्छ को मत छोड़ो, ठीक है, डिजिटल वहां वाला भी नहीं छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। एंड ऑन दैट नोट, या Let's get back to some real music right here on Masti Media 24/7. I tell you, कुछ भी कर रहे हैं लोग।

इट्स 7:20 बाय द स्टूडियो क्लॉक रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा यहाँ पर आपके साथ मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है चल रहा है। इससे पहले कि मैं अगली चॉइस यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर प्ले करूँ, विच इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय द वे, सो यू शुड वेट फॉर दैट। बट वेल भाई, थोड़ी देर पहले AI की बात हो रही थी, लेट अस कंटिन्यू विद द टेक टॉक बिकॉज अगली खबर भी कुछ उसी से ही जुड़ी हुई है। इमेजिन करिए, आप शॉपिंग मॉल में हो, कॉफी पी रहे हो, या फिर बीच पे चिल कर रहे हो, या जिम में अपना वर्कआउट कर रहे हो, सामने एक बंदा नॉर्मल लुकिंग ग्लासेस पहने खड़ा है, बट दोस ग्लासेस कुड पोटेंशियली बी टेकिंग योर पिक्चर और रिकॉर्डिंग योर वॉइस या फिर फिल्मिंग यू, और आपको पता भी ना चले। लगता है ना थोड़ा, जब ऐसी बातें इफ आई से इट लाइक दैट देन यू फील अनकंफर्टेबल, इजंट इट। वेल, नॉर्वे जो है इज नाउ टेकिंग दैट कंसर्न सीरियसली, एंड नाउ सो मेनी यू नो राइट दीज मेटा ग्लासेस एंड ऑल, ये सारी चीजें जो आ रही है मार्केट में। सो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जो है हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू प्रपोज अ टेम्पररी बैन ऑन AI पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस इन सिलेक्टेड पब्लिक प्लेसेस बिकॉज ऑफ कंसर्न्स दैट पीपल कैन बी फोटोग्राफ्ड या फिल्म्ड और ऑडियो रिकॉर्डेड विदाउट इवन नोइंग इट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन या टू लोकेशंस, द प्रपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस जो है नॉर्वे के कुड पोटेंशियली कवर द पार्क्स एंड द बीचेस, म्यूजियम्स, शॉपिंग सेंटर्स, पब्लिक इवेंट्स एंड इवन कॉन्सर्ट्स एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स। नाउ places जहां पे बच्चे involved हो, schools, kindergartens, playgrounds and youth clubs, and they are a particular concern definitely. And then there are privacy sensitive spaces जैसे कि doctors के office, swimming pools, gyms with changing rooms and showers. But important, Norway AI glasses को completely ban नहीं करने वाला है. Private use could still be allowed, as could use in situations जहां पे you are not putting somebody किसी और को else at risk of being recorded without consent. Now the government is also considering exceptions where this technology genuinely helps vulnerable people. In fact, Norway still has to work out exactly which devices would come under the restriction. Only AI enabled glasses, camera and audio glasses, or potentially other wearable recording technology as well. Ek expert group kaha ja raha hai, they will study the issue while government works towards the long term regulation. Mujhe lagta hai this is where the AI conversation gets really interesting. See, technology undoubtedly makes hamari life kafi easier, but convenience aur privacy ke beech mein line कहां पे ड्रॉ करनी है ये भी बहुत जरूरी है। फोन से कोई रिकॉर्ड करे तो एटलीस्ट चांसेस है कि आप नोटिस कर लो, राइट? बट क्लासेस से कोई रिकॉर्ड करे पता भी नहीं चलेगा। सो टेल मी, इफ समवन्स वेयरिंग AI ग्लासेस इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू इन अ कैफे, वुड यू बी एब्सोल्युटली ओके विद इट? या कॉन्शियस हो जाओगे? थिंक अबाउट दैट। फिलहाल ग्लासेस नॉर्मल हो या AI वाले, कान जो है ना एकदम ऑर्गेनिकली मस्ती मीडिया 24/7 पर यही हमारे पास रहिए। श्रेया ने एक बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे गाना रिक्वेस्ट किया है, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सुरेश वाडकर साहब की आवाज, मूवी का नाम मासूम। यस इट्स रेट्रो, बट देन ओहो ये गाना भी ना।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:31, yes, you are right, ट्रैफिक का अपडेट लेना ही लेना है। इस वक्त जो है आपको मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन TIE टुवर्ड्स चांगी बिटवीन जलान यूनोस एंड KPE। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन SLE टुवर्ड्स BKE आफ्टर अपर थॉमसन रोड। इसका कंजेशन मिलेगा टिल इशुन, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और एक व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है AYE पर टुवर्ड्स, अगर आप जा रहे हैं MCE आफ्टर जलान बूंद। Well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक का अपडेट। गाना गाना तो अगला वाला भी काफी ही इंटरेस्टिंग है। मेट्रो इन दिनों से दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, समाने लगे। आई मीन आजकल जिस तरह के गाने जो है आप तो टॉप चार्ट सुनते ही है आ रहे हैं, उन सभी में से जब ऐसे सुकून भरा बीच बीच में गाना आता है तो काफी अच्छा लगता है, तो हमें उतना प्यार भी देना चाहिए। लिसन टू इट, लेट्स डू इट टुगेदर ऑन मस्ती वॉइस। आपकी चॉइस, दिस वन मेरी चॉइस।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजारो।
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti partner event.
5: If there is one exhibition which I really look forward to, and वो भी जब दीपावली के पहले ये आता है तो दिल खुश करके जाता है, this is the one, High Life, कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, and you have to say hi to High Life. Yes, because they have got this amazing. Let me tell you, aram se, pyar se, bhai Deepavali jo hai, pass aati hui ja rahi hai. And also, there are a lot of functions and all, right? Festive parties and everything. Ab, wahi annual question jo mere jaise log apne aap se poochte hai ki yaar, पहनने को कुछ नहीं है, क्या पहनूं? कभी हमारे पास कभी कुछ नहीं पहनने को होता है, एंड होना भी नहीं चाहिए. एंड अपने कबर्ड के सामने खड़े होकर, विच रिफ्यूजेस टू क्लोज एट टाइम्स बाय द वे, बट वेल, से हाय टू High Life Exhibition. इट इज कमिंग बैक टू सिंगापुर. 13th एंड 14th ऑफ अक्टूबर को ये होने वाला है, एंड दिस वन इज बेसिकली आपका लिटल ट्रिप टू इंडिया फॉर फेस्टिव शॉपिंग विदाउट एक्चुअली बुकिंग अ फ्लाइट. हाउ क्रेजी एंड अमेजिंग इज दैट? High Life जो है, दे हैव बीन ब्रिंगिंग टुगेदर इंडियन फैशन, ज्वेलरी, लाइफ स्टाइल के लेबल्स फॉर ईयर्स नाउ. एंड इसके एग्जीबिशन जो है, दे आर नोन फॉर क्यूरेटिंग डिजाइनर अपैरल एंड ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, कमाल के होम डेकोर के आइटम्स, गिफ्ट ideas and so much more. इससे पहले के Singapore editions, they have brought creations from fashion hubs including Jaipur and Delhi and Hyderabad, Mumbai, Chennai. And the pieces and the collections जो कि normally आपको you know नहीं दिखेंगे. And this Singapore edition is promising 75 plus leading Indian designers all under one roof. So whether your festive personality is give me something elegant and understated, या फिर दीपावली है, मैं तो main character era में जाने वाली हूँ. So हर किसी के लिए सब कुछ मिलेगा. You know, think of all those silhouettes and the statement jewelry. मैं तो सोच कर ही, मेरे को लग रहा है कि बस अंतरा यही है वो. ब्लॉक कर लीजिए डेट्स, याद रखिएगा 13th एंड 14th ऑफ अक्टूबर, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक एट हॉलिडे इन सिंगापुर, ऑर्चर्ड सिटी सेंटर. दैट इज राइट भाई, हम हैं मस्ती मीडिया नेटवर्क, इनके प्राउड डिजिटल मीडिया पार्टनर्स. सिंगापुर फेस्टिव वॉर्डरोब अगर अपडेट करना है या फिर कोई भी शॉपिंग करनी है, आई थिंक फाइंड समथिंग दैट मेक्स पीपल आस्क कि यार ये कहां से लिया. High Life Exhibition, 13th and 14th October, Holiday Inn Singapore. भूलना नहीं.

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: आप कितने बड़े भी सुपरस्टार बन जाओ ठीक है एक चीज है जो बिल्कुल आप उससे भाग नहीं सकते हैं और वो है क्या ट्रैफिक रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ और यहाँ पे चल रहा है मस्ती बॉयज आपकी चॉइस भाई ऑस्कर विनर A.R. रहमान कितना मतलब हम जब बात भी करते हैं कितनी इज्जत देके बात करते हैं सोचो उनके साथ A.R. रहमान के साथ क्या हुआ भाई ऑस्कर विनर भी बेंगलुरु का ट्रैफिक वही पे हो गया ऐसे ही नहीं कहते कि बेंगलुरु का ट्रैफिक मतलब हाथ से बाहर निकल चुका है लाइक आई वाज टॉकिंग A friend of mine, she still stays in Bengaluru and she was like, ki bhai, poocho hi mat. It is just, yeah, it's really, really bad. And I can imagine because ye chota sa video jo viral ja raha hai, yaar, Rehman jo hai, he got stuck. Bengaluru traffic after his concert and of course he was like smiling and everything kyunki wo black shade wala car mein nahi the normal car mein the which people could see and he waved at the fans who recognized him and ek viral moment mein badal gaya traffic ka jam oh my god like seriously ओके चलो भाई यहाँ पर जो है ओ एक रिक्वेस्ट जाते जाते यहाँ पे आई है चलो लास्ट सॉन्ग जो है मैं इनके रिक्वेस्ट वाला प्ले करूंगी लेकिन फिलहाल इस गाने में एंट्री मारते हैं

ऐसा भी हो जाता है कि जाते जाते जो है एकदम एन मोमेंट पे रिक्वेस्ट आ जाती है, वो भी बॉस से, बताओ जिनका गया है बहुत ही लंबा लंबा दिन, एंड क्या शी इज लाइक कुछ ऐसा लगा दो कि अच्छा लगे जिंदगी के बारे में क्यों. तो मैंने कई सारे जो है दिमाग में गाने जो दौड़ रहे थे, एक तो जो रेणुका का फेवरेट गाना है वो तो पिछले घंटे में हम लोग प्ले कर चुके थे किसी की रिक्वेस्ट पे, सो आई वॉज लाइक दैट इज वन सॉन्ग दैट मेक्स लाइक चीयर अप लाइक नाइस. And then there were two, three options, but I didn't have time and I don't have time and I want her to listen to the gana I have lined up next for her. Kyunki kya hai na ki jab aapka din bahut hi lamba jaye and you go like ki bhai ab nahi samajh mein aa raha hai, ab ho bhi nahi raha hai, let us wrap it up. So साइड में सब कुछ खिसका के ये गाना लगा के जो है just enjoy and have fun. Yeah. अब दो गानों के बीच में जगदोजहद करते हुए ये गाना जो है ये लग गया. अब रेणुका आई होप यू एंजॉय इट एंड या आई होप यू डोंट हैव एनी मोर लॉन्ग डेज अहेड इन दिस वीक सो दैट यू गेट अ ब्रीदर. या एंड एवरी टाइम जो है आप किसी से मिलो आप उसको यही कहना जो ये गाना आपको कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मेरे एम्प्लॉयज ने कहा है कि इट्स द टाइम टू mujha it's the time for me to kiss go from here. Bye bye, take care, good night, I'll see everybody in the morning, subah subah hazir ho jana. Yes, bye, good night.

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से, और जिसे आप सुन रहे हैं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। सिंगापुर किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, किसी भी प्रोफेशन की बात कर लीजिए, उन सब में एक टॉप पोजीशन होती है, एक चोटी होती है। यानी किसी भी प्रोफेशन में एक इंसान टॉप पर होता है। अगर हम बात करें क्रिकेट की और अगर आप लिस्ट उठाएं तो सबसे पहले आपको जो नाम मिलेगा वो होगा सर डॉन ब्रैडमैन का। ऐसे अगर आप फुटबॉल की बात करें तो टॉप पर होंगे पेले। ऐसे ही अगर डायरेक्टर की बात करें तो नंबर एक पर होंगे शायद स्टीवन स्पीलबर्ग। और अगर आप हिंदी सिनेमा के म्यूजिक कंपोजर्स की लिस्ट देखेंगे तो जो नाम आपको सबसे पहले मिलेगा वो होगा SD बर्मन साहब का। तो सिंगापुर अब आप समझ गए होंगे कि आज के हमारे शो के फनकार यानी लेजेंड हैं यही सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से SD

देव बर्मन एक ऐसे संगीतकार जिन्हें पारस पत्थर कहा गया। वो पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छू ले तो वो चीज सोना बन जाती है। ऐसे ही जिस गाने का म्यूजिक बर्मन दा ने दे दिया, यानी बर्मन दा ने उसकी धुन बना दी, तो गाना कोई भी लिखे गाना सुपरहिट हो ही जाता था। तो आज का शो इन्हीं के नाम, आप इस टॉप के म्यूजिशियन की बातें और टॉप के गाने सुनेंगे। लेकिन पहले शुरुआत में ये गाने आपके लिए रेडियो मसी 24/7 लाइव से, इन्हें सुनिए। वापस आइए क्योंकि एसडी बर्मन साहब की पूरी कहानी लेकर हाजिर है समर यहीं पर।

0: जमाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने।
1: जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, कितना तो सोचिए मौसम।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: नाचने का मन है मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ, और आज के फनकार एस जी बर्मन साहब हैं, यानी बर्मन दादा। बर्मंदा 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा के कोमिला, जो अब बांग्लादेश में, यहाँ के एक राज परिवार में पैदा हुए। जब ये महज 2 बरस के थे तो इनकी माँ की डेथ हो गई थी। पिता राजकुमार थे नवदीप चंद्र बर्मन, जो एक अच्छे सितार वादक थे और ध्रुपद गायक थे। तो एस डी बर्मन साहब की सितार और गायन की ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो गई, घर से ही। बचपन में जब कभी अपने खेतों की तरफ जाते तो एक किसान, जो हमेशा एक गाना गुनगुनाता रहता था और गाता रहता था, उस गाने को ये बड़े मजे से सुनते, और वो गाना इतना अच्छा लगता है ना कि ये रोज उस किसान के पास चले जाते ये गाना सुनने के लिए। तो चलिए मैं बर्मंदा की आवाज में सुना देता हूँ उस किसान का गाना कौन सा था।
2: मुझे गाना गाने और संगीत सीखने का शौक दिलाया।
3: रंगीला रंगीला रंगीला रे रंगीला।
1: जी हाँ सिंगापुर, एक और खास बात है इस गाने की, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले थोड़ा इनके बचपन की बातें और कर लेते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में इनकी बोर्डिंग स्कूलिंग शुरू हुई, लेकिन इनके पिता राजा नवदीप चंद्र बर्मन ने नोटिस किया कि पढ़ाई से ज्यादा वहाँ इनके आव भगत में ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है। मतलब ये राज परिवार से थे तो टीचर्स इनका ध्यान ज्यादा रखते थे बजाय पढ़ाने के। तो साहब पिताजी ने इन्हें वहां से निकाल कर कोमिला के ही जिला स्कूल में भर्ती करा दिया। तो यहाँ से इन्होंने स्कूलिंग पूरी की और फिर कोमिला विक्टोरिया कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद एमए करने के लिए ये कोलकाता आ गए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी नहीं की क्योंकि अब मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। तो फिर क्या करते, पढ़ाई बीच में छोड़ दी। लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा। अगर पढ़ाई नहीं की तो क्या किया उन्होंने, ये सब जानेंगे, लेकिन इन गानों के बाद। वैसे जो किया उन्होंने सारी दुनिया जानती है, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या किया बताऊंगा मैं। हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव, और आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। कीप लिसनिंग।

0: वक्त ने किया।
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से, मेरा नाम है समर। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बर्मनदा ने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि अब जो ये मन है ना, ये कहीं और जा रहा है, पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। और जहां वो मन जा रहा था वो थी म्यूजिक की डगर। बहरहाल यहीं कोलकाता में ही केसी डे के सानिध्य में इन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और बाद में 1932 में भीष्मदेव चट्टोपाध्याय के साथ इन्होंने म्यूजिक सीखा, जो दिल्ली घराने के मशहूर वोकल आर्टिस्ट थे। इनके बाद इन्होंने खलीफा बादल खान से सारंगी की ट्रेनिंग ली और उस्ताद अलाउद्दीन खान से सरोद की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। बर्मनदा ने बंगाली फोक और हिंदुस्तानी क्लासिकल में महारत हासिल कर ली थी। इसी के चलते कलकत्ता ऑल इंडिया रेडियो में एज अ सिंगर और म्यूजिक कंपोजर की इन्हें जॉब मिल गई। 1934 में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया रेडियो की कॉन्फ्रेंस हुई, तो यहाँ इनको भी बुलाया गया और बर्मनदा ने यहाँ बंगाली ठुमरी सुनाई, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद बंगाली म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें भी बर्मनदा ने यही ठुमरी सुनाई और इसके लिए यहाँ इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। इसी बीच बर्मनदा ने अपनी स्टूडेंट मीरा दास गुप्ता से ही शादी कर ली। बहरहाल अब ये जग जाहिर था कि ये लव मैरिज थी, तो बर्मनदा को परिवार की तरफ से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक साल बाद इनके एक बेटा हुआ, जो इनकी अकेली संतान था। वो बेटा बड़ा होकर हिंदी सिनेमा के संगीत का जादूगर बना। आप सब जानते हैं उस जादूगर का नाम, हाँ, आरडी बर्मन साहब, जिन्हें हम पंचम भी कहते हैं। इसी बीच बर्मनदा, मैं अभी बर्मनदा की कहानी पर हूँ, एसडी बर्मन साहब की कहानी पर। बर्मनदा 1944 तक बंगाली फिल्मों में म्यूजिक देते रहे और गाने भी गाते रहे। इसके बाद शुरू होती है बर्मनदा की मुंबई की कहानी। कहानी हम शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद, मुंबई वाली कहानी। लेकिन ये गाने इतने मदहोश कर देने वाले हैं कि होश संभाल कर वापस आइएगा यहीं पर। रेडियो मजी 24/7 लाइव पर मैं हूँ समर, आपका कर रहा हूँ इंतजार यहीं पर।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: हम थे वो थी
4: और समार रंगीन, समझ गए ना, डारा डारा डारा, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हा हा हा, हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: स्वागत स्वागत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रेडियो मजी 24/7 लाइव पर, जहां आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी एसडी बर्मन साहब की कहानी लेजेंड्स फिर से। में 1944 में बर्मनदा मुंबई आ गए। एक्चुअली फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्मिस्तान स्टूडियो के पार्टनर शशधर मुखर्जी ने इन्हें बुलवाया था। शशधर मुखर्जी ने बंगाली फिल्म्स में इनका म्यूजिक सुना था और वो इनसे काफी इंप्रेस थे, तो इन्होंने कहा कि यार मुंबई आ जाओ। मुंबई का बुलावा भेज दिया और वो कुछ फिल्म्स बना रहे थे उन दिनों में, जिनके हीरो थे दादा मुनि अशोक कुमार साहब। तो साहब बर्मनदा को 1946 में मिला पहला शिकार, नहीं पहला शाहकार, और उनका पहला शाहकार था फिल्म शिकारी, नाम यही था उसका, शिकारी।
2: अगर मैं पूछूं जवाब दोगे दिल क्यों मेरा तड़प रहा है।
1: इसी साल एक और फिल्म आई और वो भी अशोक कुमार साहब की थी, 8 दिन। लेकिन ऐसा नहीं था कि पहली फिल्म का ही म्यूजिक हिट हो गया और दूसरी का भी हिट हो गया, ना, दोनों ही फिल्मों का म्यूजिक फ्लॉप हो गया। बर्मनदा निराश हो गए और अशोक कुमार से बोले कि भाई मैं तो जा रहा हूँ वापस। लेकिन दादा मुनि यानी अशोक कुमार ने बोला कि चले जाना, लेकिन मेरी एक मूवी और है, उसका म्यूजिक देकर चले जाना। और जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? उस फिल्म का नाम था मशाल। इस फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट रहा और इसी के साथ बर्मनदा हमेशा के लिए मुंबई रुक गए। मशाल का ये गाना सुनिए आप।
3: आँखों से दूर दूर है पर दिल के पास जो, कौन है मेरे वो, कौन है मेरे वो।
1: इसके बाद वो दौर शुरू हुआ जिसे बर्मनदा का युग कहते हैं। इस दौर को शुरू करने से पहले गाने जो सिर्फ मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं, आप तो यही हैं, आपके लिए आ रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। इन्हें सुनिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर। अगर कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहें, मैं इंतजार करूंगा।

बाहर आई, वेलकम बैक। आपका दिल से स्वागत, शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से, और आज की लेजेंड है ग्रेट एसडी बर्मन साहब। ब्रेक से पहले मैं बता रहा था कि बर्मन दा का दौर शुरू हो चुका था, पहले 1950 से 1960 की बात करते हैं, ठीक है। इस दशक में एक्टिंग और म्यूजिक का जबरदस्त कॉम्पिटिशन था, यानी एक तरफ राज कपूर की एक से बढ़कर एक फिल्में हैं जिनका म्यूजिक शंकर जयकिशन दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक्टिंग के बादशाह दिलीप कुमार की फिल्में जिनका म्यूजिक नौशाद साहब दे रहे थे, और तीसरी जोड़ी यानी देवानंद साहब की फिल्में और इनका म्यूजिक कौन दे रहा था, अरे अपने बर्मंदा। देव साहब की हर फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट था, टैक्सी ड्राइवर 1957, इसी साल 9/2/11 वो गाना है ना, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, इसी फिल्म का है 9/2/11 का। और फिर अच्छा जी मैं हारी चल मान जाओ ना काला पानी। इसके अलावा मेन गेस्ट मुनीम जी हर फिल्म के गाने सुपरहिट हो रहे थे। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि राज साहब की फिल्मों का म्यूजिक ज्यादा बेहतर था या नौशाद साहब का म्यूजिक ज्यादा बेहतर था या फिर बर्मंदा का। वैसे नवकेतन जो देवानंद साहब का ग्रुप था, उनका जो बैनर था, इसमें पहली फिल्म इनकी 1950 में आई थी, सफर नाम था उसका। इसके बाद 1951 में आई जिद्दी। जिद्दी का हर एक गाना सुपरहिट हुआ, गीता दत्त के गाए हुए हर गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए, और इसी साल आई जान।

ये गाना भी जबरदस्त हिट हुआ। सिंगापुर एक लिस्ट है बरमंदा के सुपर हिट म्यूजिक की, तो उस लिस्ट के कुछ गाने सुनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर म्यूजिक मस्ती और कहानियां लेजेंड्स की, यहीं

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Manu, let's go.
2: चलो सब चले गए, प्रश्न नहीं उठता, मैं तो सो ही जाता।
1: अरे बाहर निकलो।
3: ये आप मुझे कहाँ ले आए?
1: ये आप बंद करो।
3: सॉरी,
1: टोकरी संभालो। जगह कैसी है?
3: बड़ी प्यारी जगह। मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
3: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
3: जैसे?
1: कर सकोगे?
3: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
3: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सकी तो?
3: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
3: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठा के सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
3: टोकरी?
1: मंजूर?
3: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लूँ। वो देखते हो वो?
3: हाँ।
1: क्या?
3: मुर्गी।
1: हाँ पकड़ लाओ।
3: मुर्गी?
1: हाँ।
3: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। अच्छा सिंगापुर, मुझे एक बात बताइए, आप सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही होंगे, ऐसा भी नहीं सकता कि नहीं जानते हो ना। आप कहेंगे कुछ और बोलो यार समर, हाँ जिसको हम नहीं जानते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सचिन को नहीं जानता, क्योंकि क्रिकेट का नाम लेते ही सचिन का नाम याद आता ही आता है। अरे क्रिकेट का दूसरा नाम सचिन है भाई इंडिया में तो सिंगापुर सचिन तेंदुलकर का नाम SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन के नाम पर ही रखा गया था, ये शायद आपको नहीं पता होगा। एक्चुअली सचिन के पिता बर्मनदा के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए जब सचिन पैदा हुए तो उन्होंने अपने बेटे का नाम सचिन रख दिया बर्मनदा के नाम पर। लेकिन हम तो बर्मनदा की बातें कर रहे थे ना। हाँ, तो बर्मनदा का 60 का दशक बहुत ही कमाल का था और इसमें इन्होंने गुरुदत्त साहब की फिल्मों में भी म्यूजिक दिया और हर फिल्म म्यूजिकली हिट रही, जैसे प्याजा दत्त साहब की कल्ट क्लासिक मूवी। इस फिल्म का एक एक गाना जबरदस्त हिट हुआ, यानी जिस पर फिल्माया गया वो एक्टर फिर उसी गाने से जाना जाने लगा। मैं गाने सुनाता हूँ कौन कौन से थे उस फिल्म में।

गाना सुनते आपको कौन याद आते हैं? जी याद आ गए ना, जॉनी वॉकर। मैंने कहा था ना, रफी साहब ने इस गाने को ऐसे गाया जैसे जॉनी वॉकर खुद गा रहे हो। इसके अलावा वो गाना जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, कितना डेप्थ है इस गाने में। ये गाना सुनने के बाद गुरुदत्त साहब नजरों के सामने आ जाते हैं। कागज के फूल, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम तुम रहे न तुम। तो चलिए, इतने सारे गानों की बात हो गई तो बर्मनदा के कंपोज किए कुछ और गाने सुन लेते हैं। और इन गानों के बाद वो किस्सा सुनाऊंगा जब किशोरदा को बर्मनदा नींदों में भी फोन कर दिया करते थे। आप सुनते रहेगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स फिर से, मैं आपका फिर से स्वागत। मैं हूं समर और सुना रहा हूं आपको बरमंदा की कहानी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि किशोरदा को बरमंदा फोन करते थे नींदों में। एक्चुअली जब आराधना बन रही थी और इस फिल्म का म्यूजिक बरमंदा ही दे रहे थे, हालांकि इसी दौरान उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। फिर बाद में इस फिल्म का म्यूजिक उनके बेटे पंचम दा ने कंप्लीट किया था। तो साहब एक रात बरमंदा ने किशोरदा को कॉल किया। किशोरदा ने फोन उठाया और कहा, हेलो हेलो, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी सामने से। फिर अचानक से बरमंदा बोले, ए किशोर। किशोरदा बोले, बोलो दादा, आप इतनी रात को कॉल क्यों किया? बरमंदा बोले, ए किशोर, मैंने एक धुन बनाई है, ये सुन। और साहब फिर बरमंदा गाने लगे और किशोरदा को बोलते हैं, तू भी मेरे साथ गा। इधर किशोरदा को नींद आ रही थी। किशोरदा नींदों में ही गा रहे थे, कोरा कागज था ये मन मेरा। फिर किशोरदा बोले, दादा अभी नींद आ रही है। फिर दादा बोले, अच्छा चलो ठीक है, कल घर आ जाना, इसकी अच्छे से रिहर्सल करेंगे। दरअसल बरमंदा किशोरदा से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए कभी कभी तो वो रात को कॉल कर देते थे। और जब किशोरदा पूछते कि दादा की होलो, तो दादा बोलते, कुछ नहीं, मैं तो बस तेरा गला चेक कर रहा था, सही है या नहीं, वो कल रिकॉर्डिंग है ना। गजब दिसा बरमंदा भी और गजब था उनका म्यूजिक भी। अच्छा, बरमंदा किशोरदा को गाने के लिए क्या बोलते थे सुनेंगे आप, तो सुनिए।
2: शशिंदा मुझे बार बार समझाते कि देख किशोर, यूं गा, ऐसा गा और फील करके गा, एक्सप्रेशन के साथ, ज्यादा मुर्की या तान मारने से कुछ नहीं होता, सीधा गाएगा तो गाना पब्लिक को अच्छा लगेगा, समझा ना।
1: बहरहाल और भी कई किस्से हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इन गानों के बाद। ये लेजेंड्स फिर से, मैं हूँ समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स, मेरे यानी आपके अपने समर के साथ बरमंदा। यही है हमारे आज के लेजेंड एस डी बर्मन साहब, उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो उनके दिए हुए सुपर हिट म्यूजिक से सजा है आज का ये शो। सुन रहे होंगे आप और बड़ा लुत्फ उठा रहे होंगे आज के शो का। सिंगापुर बर्मंदा ने 1935 से 1976 तक एक से बढ़कर एक म्यूजिक दिया। वो म्यूजिक आज भी उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ फिल्में हैं जिनका जिक्र मैं जरूर करूंगा क्योंकि बर्मंदा की म्यूजिक से ये फिल्में आज भी जानी जाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म टैक्सी ड्राइवर के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो अब मुझे जो मूवी याद आ रही है वो है गाइड। इस फिल्म का हर एक गाना सुपर डुपर हिट था और ये मूवी भी कमाल की फिल्म थी, क्लासिक थी। देव आनंद और वहीदा रहमान की जबरदस्त एक्टिंग थी इसमें। गाता रहे मेरा दिलिया फिर, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। हर गाना हर दिल पर छा गया था। लेकिन इन गानों के लिए दाद देनी पड़ेगी शैलेंद्र साहब की भी, जिन्होंने इन्हें इतना खूबसूरत लिखा। देव साहब की हर फिल्म का म्यूजिक एस डी बर्मन साहब ही दे रहे थे। अरे भाई, जब ऐसा म्यूजिक कंपोजर था नवकेतन के पास तो फिर वो कहीं और क्यों जाते। प्रेम पुजारी, तेरे घर के सामने, बम्बई का बाबू, जूल थीफ, हर फिल्म का हर गाना हिट।

इस फिल्म के लिए भी बर्मनदा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद रिशिदा के साथ चुपके चुपके मिली, हर फिल्म में इनका म्यूजिक अच्छा ही रहा। 1963 में आई फिल्म बंदिनी, जिसका वो गाना जो गुलजार साहब ने लिखा था, मोरा गोरा अंगले।

क्या गाना है, ऐसा म्यूजिक कि सुनने के बाद एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं हम, और अब आप भी खोएंगे एक अलग ही दुनिया में ये गाने सुनने के बाद। तो सुनिए और फिर आइए वापस यहीं पर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं। कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पर आ जाएं। स्टे कनेक्टेड।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: लीजिए एक बार फिर से लौट आया हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव, और आपसे मुखातिब हूँ मैं लेजेंड्स फिर से नाम के इस बेहद उम्दा शो पर। आज इसलिए ये शो और ज्यादा उम्दा हो गया क्योंकि हम आज सचिन देव बर्मन की बात कर रहे हैं, उनके कमाल के गाने आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा सिंगापुर, आपको क्या याद है मैंने शो की स्टार्टिंग में आपसे कुछ कहा था, और ये कहा था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, याद आया? अरे वही धुन जो

0: धंधा गुनगुनाया करते थे, वो जो उनके बचपन में वो किसान गुनगुनाया करता था, नहीं याद आया? चलिए पहले वो धुन सुन लीजिए आप।
1: रंगीला रंगीला रंगीला रे रंगीला।
0: हाँ जी, अब याद आ गई ये धुन। तो सिंगापुर, इस धुन का किस्सा यह है कि ये धुन बरमंदा की फेवरेट धुन थी, तो वो हमेशा इसे गुनगुनाते रहते थे। और वही नहीं, इनके बेटे पंचमदा भी इसे गुनगुनाने लगे। पापा को गुनगुनाते देखते थे तो सीख गए। लेकिन बरमंदा ने इस धुन पर कभी कोई गाना नहीं बनाया, लेकिन उनके बेटे यानी पंचमदा ने इस धुन पर गाना बनाया। और आप जानते हैं वो कौन सी फिल्म थी, वो कौन सा गाना था? वो फिल्म थी 1994 में आई अनिल कपूर की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। और वो गाना था कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। तो इस गाने में जो शुरू में ये धुन आती है ना, वो इसी पर बेस्ड है।

यानी ये क्रेडिट भी एक हिसाब से बरमंदा को जाता है। सिंगापुर अभी कुछ गाने सुनने का टाइम है, लेकिन आज की आखिरी मुलाकात अभी बाकी है। आप कहीं जाएगा नहीं, बातें होंगी इन गानों के बाद। कीप लिसनिंग रेडियो मजीर 24/7 लाइव।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: नाचने का मन है, मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक लेजेंड, सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत, दिल से स्वागत। वैसे ये आज की आखिरी मुलाकात है सिंगापुर, लेकिन हमारा साथ आखिरी नहीं है, क्योंकि हम साथ साथ हैं, हम हमेशा साथ रहते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आप कभी भी आइए, हमारा दरवाजा खटखटाइए, मतलब कहना चाहे वो कह दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि ये शो आपको कैसा लगता है। बहरहाल आज हमने बरमंदा की बात की। बरमंदा क्योंकि सबसे सीनियर थे तो सब उनकी इज्जत करते थे और डरते भी थे उनसे, लेकिन बरमंदा दिल के बड़े अच्छे इंसान थे। एक किस्सा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने शेयर किया था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को तो आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर बांसुरी वादक हैं और उन्होंने कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है, कमाल का म्यूजिक दिया है। पंडित शिव शर्मा के साथ मिलकर शिव हरि के नाम से उनका म्यूजिक आता था, सिलसिला में उनका म्यूजिक है, लम्हे में उनका म्यूजिक। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने कहा कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए वो उनके कुछ साथियों के साथ बरमंदा के घर पहुंच गए। एक्चुअली बरमंदा ने ही उन्हें बुलाया था। तो साहब पहले तो वो पहुंच गए, जैसे ही बरमंदा ने अपनी बीवी से कहा कि अरे भाई इनके लिए रसगुल्ले लाओ, तो रसगुल्ले लाए गए। बरमंदा ने एक प्लेट में सारे रसगुल्ले डाल दिए और बोले खाओ। तो हरिप्रसाद जी ने एक उठा लिया, फिर बोले और खाओ। तो हरिप्रसाद जी को वैसे ही भूख लग रही थी तो उन्होंने 7-8 रसगुल्ले खा लिए, मतलब ऐसे करते करते सब नहीं वो रसगुल्ले खत्म कर दिए। दूसरे दिन जब गाने की रिहर्सल थी तो लता जी भी वहीं थी, हरिप्रसाद जी भी थोड़ी देर बाद आ गए, बरमंदा भी वहीं थे। हरिप्रसाद जी के जाते ही बरमंदा ने कहा लता इनको जानती हो ये कौन है? लता जी ने कहा हाँ जी मैं जानती हूँ, ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। बरमंदा बोले हाँ और देखना आज भी ये बहुत अच्छी बांसुरी बजाएगा, बहुत मीठी, कल रसगुल्ले ही रसगुल्ले खाए थे ना, तो बजाओ। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था बरमंदा का। किशोरदा कहते हैं कि मैंने बरमंदा को करीब से जाना है और मैंने ये जाना कि संगीत ही बरमंदा की दुनिया है, वो संगीत के बिना नहीं रह सकते। सिंगापुर जब आराधना फिल्म के दौरान बरमंदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और जब पंचमदा यानी उनके बेटे उनके पास बैठे थे तो बरमंदा ने ईसीजी मशीन की तरफ इशारा करते हुए पंचमदा को कहा कि ये जो वेव्स चल रही है ना, ये है असली धुन, जब तक इस तरह तुम्हारी धुनें चलती रहेंगी तब तक तुम्हारा म्यूजिक बेस्ट होगा, और जब तुम्हारी धुनें ऐसी नहीं होंगी उस दिन तुम्हारा म्यूजिक फ्लॉप हो जाएगा। क्या बात है, क्या सिखाया एक बाप ने गुरु ने।
2: खोया

0: रहेगी।
1: चलिए फिलहाल आज का शो यहीं तक, लेकिन फिर किसी ऐसे ही फनकार के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और कीजिए कुछ वादे। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाइएगा और किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाइएगा और कुछ ऐसा कर जाइएगा कि लोग आपको याद करें। और याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।

कैसा बन गया है? कैसा बन के कैसा बन गया? ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंघन।

फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे फांदे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे फांदे कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया ए साला मैं तो साहब बन गया साला मैं तो साहब बन गया ए साहब बन के कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये फूट मेरा देखो।

बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोर

0: लिसन, मैं पेरिस में अकेली हूँ।
1: नो
0: यार, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी?
1: आई डोंट नो।
0: देख, अकेली लड़की, अनजान शहर,
2: कुछ हो गया तो।
1: अच्छा देख, बेड एक ही है, शेयर करना पड़ेगा।

रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: इस दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज बिकती है।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
1: लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं? खरीदारी करने के बाद अगर खरीदार को ये मालूम पड़े कि वो ठग लिया गया है,

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live.

हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम रेडियो मस्ती 24/7 पर। यहाँ पर गहरा हुआ आपका मेरा रिश्ता, सुबह सुबह वाला कितना गहरा हुआ। आई थिंक ट्यूसडे मॉर्निंग वाला रिश्ता ही है जो हमारा एक और भी ज्यादा दिन ब दिन गहरा होता हुआ जा रहा है। नो वंडर ये जो वो एक लाइन नहीं होती है कि द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। बाय द बर्ड व्हेन एवर वेक्स अप इफ ट्राइज हार्ड इनफ गेट्स द वर्म Eventually, नहीं थोड़ा सा बीच बीच में अकॉर्डिंग टू टाइम जो है ये सारे कहावतें जो है चेंज होती रहनी चाहिए। बट वेल, मैं आपके अंतरा यहाँ पर बिल्कुल मस्ती का मंत्र शुरू करने है, बिल्कुल पहुंच चुकी है डॉट ऑन टाइम। मैं वही सोच रही थी अभी MRT में बैठे बैठे कि लाइफ में हर दिन गुड डे हो जरूरी तो नहीं है, राइट? बट हर दिन में कुछ ना कुछ गुड मिल जाए वो काफी है ना। नाइस थॉट। सो कभी वो गुड एक अच्छी सी न्यूज होती है, कभी किसी का अनएक्सपेक्टेड सा एक मैसेज आ जाता है, कभी काम अनएक्सपेक्टेडली जल्दी खत्म हो जाता है, और कभी बस इतना ही कि सुबह की चाय जो है वो बन जाती है परफेक्ट, जैसे कि मेरी बनी है आज की डेट में। ओहो, मतलब खुद ही पे इतना वो ऐसा नाज टाइप की फीलिंग आ रही है कि क्या चाय बनाई है तुमने अंतरा, वाह वाह क्या फ्लेवर आया है अदरक का और वो जो खुशबू आती है ना एकदम सुबह गरम गरम चाय की, ओहो टू गुड। एंड या सो बेसिकली आई थिंक हम लाइफ से कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, परफेक्ट डे, परफेक्ट मूड, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान। अरे ट्यूजडे है बॉस, प्लान तो हम बनाएंगे, लाइफ अपना वर्जन ऑफ कोर्स उसे जरूर भेजेगी। सो आज का मंत्र बहुत सिंपल है, जो अच्छा आए एंजॉय इट, जो थोड़ा उल्टा पुल्टा आए हैंडल कर लेंगे यार। मे दिस ट्यूजडे ब्रिंग अस सम रियली लवली सरप्राइजेस, और जो सरप्राइजेस लवली कैटेगरी में नहीं भी होंगी उन्हें हैंडल करने का पेशेंस, थोड़ा ह्यूमर और एक स्माइल हम जरूर देंगे। सो वेर एवर यू आर लिसनिंग फ्रॉम, वट एवर योर मॉर्निंग लुक्स लाइक, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी अंतरा एंड मस्ती का मंत्र पर ट्यूजडे को थोड़ा सा और मस्त बनाते हैं गानों के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
2: मुझे जान पहले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
2: रात अकेले है।
3: जोश में रहो।
4: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
5: It's 7:20 by the studio clock. Good morning, Radio Masti 24/7. मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ चल रहा है मस्ती का मंत्र, which means it's a Tuesday morning. थोड़ी देर पहले यहाँ पर patience और smile साथ साथ handle करेंगे. ऐसी बहुत ही wise बात के साथ जो है शुरू किया था आज का ये शो. Well, जितनी देर में वो हुआ उतनी देर में मेरी पहली खबर जो है उसमें विद्युत जामवाल पेशेंट्स के नेक्स्ट लेवल पर जाकर उन्होंने कुछ और ही कर दिखाया. सो देर आर पीपल व्हेन आई वॉच देम डूइंग समथिंग आई गो लाइक कैसे कर लेते हैं. आई मीन आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. ओके सो बेसिकली ही इज करंटली प्रमोटिंग अपनी हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर. ओके और उसके इवेंट पे विद्युत सडनली went into this intense open-eyed meditation. I kid you not, it is open-eyed meditation. The thing is, the closed-eye meditation only I cannot do. यहाँ पे बंदा open-eyed meditation कर रहा है. So, of course, 15-16 minute के लिए he went into that zone. He stood absolutely still, eyes open, completely focused और कुछ देर के बाद आंखों से उनके यू नो टप टप पानी सा भी जो है गिरने लगा. द ऑडियंस वॉज अपेरेंटली वॉचिंग इन कंप्लीट अमेजमेंट एंड there's a connection over here. So Vidyut is making his Hollywood debut and the iconic Street Fighter का character ये निभाने वाले हैं, the Yogi Warrior. Vidyut himself has trained in martial arts from a very young age, including kalari pe too, and he says years of training made his role feel almost like destined for him. Now the film releases in India I think 16th October ke aas pass in English, Hindi, Tamil and Telugu. But what I actually liked about was that what he said afterwards jab ye intense open-eyed meditation ka wala situation hua, he explained that the technique was connected to a particular thing, a yoga sutra, and his message especially for the younger people was basically kabhi kabhi rukna bhi seekho. We see everybody running, right? Ye karna hai, wo achieve karna hai.

आप उस महफिल में करते हुए जोन आउट करके वापस भी कभी कभी आ जाते हो, है ना? किया है आपने? नहीं किया? ये मेरे टाइप का ओपन आई मेडिटेशन है. दिस मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 पर. या स्टे विद मी.

0: A beautiful Tuesday morning. Good morning. Radio Masti 24/7 पर इट्स टाइम फॉर ट्रैफिक अपडेट. 7:33 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. आइए आपको बताया जैसे कपूर की सड़कों का हाल चाल. व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स शांगी आफ्टर लॉनी रोड एंड व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स अटवास आफ्टर थोपायो एंड हैवी ट्रैफिक की खबर मिल रही है इस वक्त ऑन CTE टुवर्ड्स AYE एट AMK एवेन्यू 1 एग्जिट. वेल दैट्स द ट्रैफिक अपडेट 10 घंटे का एंड चलते हैं एंड बढ़ते हैं आगे एंड बीट्स को थोड़ा सा पंप अप करते हैं. सुनिधि चौहान इज अप नेक्स्ट फ्रॉम साउंड ट्रैक ऑफ फन ने कहा. दिस इज मोहब्बत ऑन रेडियो मस्ती 24/7. गुड मॉर्निंग.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: सुबह रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है, क्या बात है। फील्स लाइक ट्यूसडे मॉर्निंग कंप्लीटली। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 ऑन ट्रॉप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंजरा। इतनी सारी खबरों अबरों के साथ साथ ये सारी चीजें जो सिंगापुर में होने वाली है उसके बारे में भी अपडेटेड रहना उतना ही जरूरी है, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस्टिव सीजन, बिकॉज देयर इज सो मच दैट वी कैन डू एंड वी मस्ट डू, क्योंकि फेस्टिव सीजन इज सपोज टू डू दैट टू अस। भाई ये एक बड़ा ही डेंजरस सा सेंटेंस जो फेस्टिव सीजन में आता है कि बस मैं देखने जा रही हूँ, खरीदना मुझे कुछ नहीं है। एंड ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि इस बात का एंड कहाँ और कैसे होता है। सिंगापुर अगर दीपावली का शॉपिंग का मूड ऑफिशियली ऑन हो चुका है आपका, एंड या यू फील लाइक कि कुछ तो करना बनता है, देन गेट रेडी बिकॉज जैक सलाम इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर बैक अपना 10 डे दीपावली डिस्काउंट सेल, इट्स द 43rd एडिशन। एक तो ये अपनी 20th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, 16th टू 25th ऑफ अक्टूबर, दैट्स व्हेन इट इज हैपनिंग। एंड शॉपिंग के साथ साथ अपने लक को साथ ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज यू कुड स्टैंड अ चांस टू विन free tickets, air tickets to destinations including Dubai, London, Paris, New York and Rome. Mera to Rome hi jaag utha hai sunkar, chalo chalte hain. Imagine gaye the Diwali ke shopping karne and wapas aaye holiday plan ke sath. I think nothing like it. That's the best. So there's more, okay? There are chances to win smartphones and Apple watches and other prizes as well. Plus, throughout in this dinome, you have daily lucky draws, a lot of kids activities, cooking competition, chess competition and community awards and Deepavali dinner, and there's something for everyone in the family. And shopping bhi aisi ki matlab India ki galiyon ka flavor Singapore mein ek chhat ke niche, chahe जयपुर से होते हुए चेन्नई गए, मुंबई गए, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, एंड हाउ अमेजिंग इज दैट, फेस्टिव फैशन एंड फूड एंड फन, बेसिकली प्रॉपर एक आउटिंग है। सो डेट्स जो है वो जरा सा यू नो सेव करके रख लीजिए, 16-25 अक्टूबर, सिंगापुर एक्सपो हॉल 9 फॉयर 3। बेस्ट पार्ट, एंट्री इज फ्री। तो या आई थिंक वी ऑल मस्ट मेक द प्लान। और फिलहाल के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा ऐसे वाला गाना जो है, क्योंकि जैसे ही इसका म्यूजिक स्टार्ट होता है आई गो लाइक व्हाट अ सॉन्ग मैन, रेडियो मस्ती 24/7 पर। गुड मॉर्निंग।

है, ऑफ कोर्स मस्ती का मंत्र। सुबह सुबह जब अंतरा आती है तो वो ट्यूसडे मॉर्निंग हो जाता है। अब सबने ये सेट कर लिया, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही सेट हो गया है एज पर माई बॉडी क्लॉक। सो सेबो, अगर आप भी उन लोगों में से है जो सोच रहे हैं कि बस 2026 खत्म हो और जेबी जाना जो है जौहर बारू जाना और ईजी हो जाए, तो सब्र थोड़ा सा और करना पड़ेगा। सो वेल गेटिंग द न्यूज फ्रॉम सिंगापुर इटसेल्फ, मच अवेटेड जौहर बारू सिंगापुर RTS लिंक जो है विल नाउ बिगिन पैसेंजर सर्विसेज इन Feb 2027 इंस्टेड ऑफ अर्लियर जो डिसाइड हुआ था एंड ऑफ 2026 वाला टारगेट। अब फिर डिले ऐसा वाला जो है सबके जहन में यहाँ पे जो रहते हैं उनका ख्याल आया। बट इंटरेस्टिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बोथ द सिंगापुर एंड मलेशिया साइड्स सब्सटैंशियली कंप्लीट हो चुका है एंड द रिमेनिंग सिस्टम टेस्ट जो है एंड द ट्रायल रन्स आर एक्सपेक्टेड टू फिनिश बाय 31st of December, आफ्टर विच कम्स द इंडिपेंडेंट सेफ्टी का सर्टिफिकेशन एंड द फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। सो एसेंशियली ट्रेन ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसको ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल मिलना जो है वो बाकी है। एंड वंस starts, this could genuinely change Singapore and JB ka commute. Now, the RTS will connect Woodlands North to Bukit Chagar in JB in around 5 minutes with capacity for up to 10,000 passengers per hour in each direction. At the busiest times, trains jo hai could come roughly every 3 to 3.5 minutes. But immigration, okay, both Singapore and Malaysia ka immigration clearance will be done before you board at the departure station. Matlab, destination par utro and you don't have to clear immigration all over again. And just for perspective, this project has been discussed and developed in different forms पिछले 16 साल से किया जा रहा है। सो फेब तक का एक्स्ट्रा वेट इतना तो आप कर ही लेंगे, राइट? वैसे भी आज सुबह से हम पेशेंस की काफी ही बात कर रहे हैं। सो गुड थिंग्स टेक टाइम, और जे भी सिर्फ 5 मिनट में पहुंचने वाली ट्रेन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो हम दे ही सकते हैं, क्या कहते हो भाई? एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार बाहर जा रहा है। हमारे सुनील जी जो है जो हु ट्यून्स इन ऑल द वे इंडिया में बहुत ही अर्ली इन द मॉर्निंग ये बंदा उठ जाता है and he tunes in, he has been tuning in from I don't know how many Tuesdays now, okay? And bhai koi itni dur se itna subah subah utke gana request kare, mana nahi karte usko, bilkul bhi nahi. Sunil, aapka gana, enjoy this morning on Radio Masti 24/7. Good morning.